प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। आइए दोस्तों सुनते हैं माँ का प्यारा सा भजन।

उस माँ ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, संयम, धैर्य और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। मान्यता है कि उनके सच्चे मन से आराधना करने से भक्तों को आत्मबल, शांति और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए अपने मन को भक्ति के रंग में रंगे, माँ के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें और अपने दिन की शुरुआत करें माता रानी के पावन स्मरण के साथ, इस प्यारे से भजन के साथ।

भक्ति संगीत आराधना कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। माँ ब्रह्मचारिणी की बात कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्र मौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं ये माँ का भजन।

दोस्तों कहते हैं जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ माँ का आशीर्वाद अवश्य बरसता है। तो आप भी अपनी सारी चिंताएं माँ के चरणों में छोड़कर भक्ति की इस मधुर यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। इसी मंगल भावना के साथ प्रस्तुत है माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा का गुणगान करता हुआ एक भक्तिमय भजन।

भोर की पावन वेला हो, माँ के नाम का उजियारा हो, हर मन में श्रद्धा की ज्योति जले, हर घर में माँ का वास हो। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज हम माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप तप और त्याग की देवी माँ ब्रह्मचारिणी के श्री चरणों में शीश नभाते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी जिनकी तपस्या में धैर्य है, जिनकी साधना में शक्ति है और जिनकी कृपा में भक्तों के लिए अपार ममता है। आइए माँ का पावन स्मरण करते हुए अपने मन को भक्ति के रंग में रंग दे। तो भक्ति रस में डूबने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब गूंजेंगे माँ के जयकारे, सजेगी सुरों की आराधना और महकेगा श्रद्धा का हर पल। तो आइए सुनते हैं माँ का ये प्यारा सा भजन।

दोस्तों, कार्यक्रम भक्ति संगीत आराधना आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। देवी अपने सबसे सरल रूप में है, एक सादी सफेद साड़ी पहने, वे एक हाथ में कमंडल या जलपात्र और दूसरे हाथ में माला धारण किए हुए हैं। देवी पार्वती का अविवाहित रूप है, उनका ध्यान मगन रूप है और उनके चेहरे पर परमानंद और शांत शक्ति झलकती है, जो उनके द्वारा किए गए कठोर तपस्याओं का प्रमाण है। क्योंकि देवी अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करती हैं, इसलिए ये दिन ध्यान के लिए शुभ है। जो लोग व्रत रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और श्रद्धा पूर्वक ध्यान करते हैं, देवी उन्हें प्रेम, सफलता, ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी की भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने से भक्तों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने, मन की इच्छा पूरी करने और अंततः मोक्ष या ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी देवी ने कठोर तपस्या की है, इसलिए वे अपने भक्तों के दुखों को भी दूर कर सकती हैं। आइए हम भी भक्ति के इस रस में रंग जाते हैं, सुनते हैं माँ का भजन।

दोस्तों इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम भक्ति संगीत आराधना। आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों ब्रह्म अनंतता का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी वो है जो अनंतता में गतिमान है। रोचक बात ये है कि अनंतता के सर्वव्यापी होने पर भी ये गतिमान रह सकती है। अनंतता में गति ही सूक्ष्म जगत की वास्तविकता है। ये अंतरिक्ष के समान है, यद्यपि ये स्थिर प्रतीत होता है, वास्तव में ये गतिशील है। अंतरिक्ष में अपार गति है, इसकी तुलना सागर की लहरों से की जा सकती है। विशाल लहरें कहीं जाती तो नहीं, लेकिन गतिमान रहती हैं। ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ ऊर्जा के पवित्र स्वरूप को दर्शाता है। दुर्गा के दूसरे रूप में नवीनता का चित्रण है, इसकी तुलना सूर्य के किरणों से की जा सकती है। सूर्य की किरणें प्राचीन है और लाखों वर्षों से विद्यमान है, फिर भी प्रतिदिन चमकने के कारण उनमें ताजगी और नयापन का एहसास होता है।

0: दूसरा कार्यक्रम आप सभी सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना। आज का दिन यानी कि नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप में। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी इसी तरह से माँ की भक्ति में मगन रहिए और माँ का आशीर्वाद आप सभी पे इसी तरह से बरकरार रहे। आशीर्वाद आप सभी की जिंदगी में बना रहे ये कामना करते हुए कार्यक्रम संपन्न करते हैं। एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पन।
1: कानवी दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक। ता श्रोताओं कर दिन कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने। तुहां सारे इन्ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी।

आहां बोला दे न रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारेयां ट्यून कीते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चलिया है माटी दी महक। श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो हाँ सारे ट्यून कितने है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त शशि करने ता श्रोताओं बढ़ देने कार्यक्रम चल गए कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने तो बढ़ दिन कार्यक्रम च आगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी नी सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल, शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने, ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: पंडित मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है, पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का।
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी।
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा चल,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की।
15: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
16: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, न्यू शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

हमारे और ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया, ये न होगा किसी तौर चाहे चले छुरिया।

नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ 11 अक्टूबर 2026। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। तकनीकी क्षेत्र में युवाओं के लिए खुल रहे समृद्धि के नए द्वार, डिजिटल आधारभूत संरचना को किया जा रहा सुदृढ़, नशे के खिलाफ जनभागीदारी जरूरी, समाज के सहयोग से ही खत्म होगी चिट्टे की कुरीति। चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ कार्यक्रम। न्याय का वास्तविक उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय सुनिश्चित करना है। कानून और न्याय के प्रति सम्मान का भाव आवश्यक। सज गई शक्तिपीठ, रात को भी खुले रहेंगे मंदिरों के कपाट, सुरक्षा कड़ी, ड्रोन से नजर। हिमाचल में 11,500 पदों पर भर्ती को मंजूरी, आंगनवाड़ी वर्करों, वन मित्रों का मानदेय बढ़ा। एम्स में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब समाचार विस्तार से

हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। एआई के दौर में युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा रहा है और उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के छात्रों, शिक्षण संस्थानों और रोजगार प्रदाताओं को एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर तकनीकी शिक्षा विभाग ने तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल शुरू किया है। ये अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में प्लेसमेंट और भर्ती प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना है। तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल युवाओं और उद्योगों के बीच एक प्रभावी सेतु काम कर रहा है। ये पोर्टल एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है जहां छात्र अपनी प्रोफाइल, अपनी कौशल क्षमताओं का प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्रों का विवरण अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर ऑनलाइन आवेदन तथा अपने प्लेसमेंट की स्थिति की निगरानी भी कर सकते हैं। ये पहल छात्रों को रोजगार के अवसरों और उद्योगों की आवश्यकता तक सीधी पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाएगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैत में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में चिट्टे के दुष्प्रभावों, इसकी रोकथाम और नशे के खिलाफ सामाजिक सहभागिता की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पूरे हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों की संपत्तियों को जब्त करने जैसी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री इस गंभीर समस्या को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए गए सरकारी सेवा में कार्यरत पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार ने चिट्टे से संबंधित सूचना देने वालों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में न्याय का अर्थ केवल न्यायिक आदेशों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें निष्पक्षता, विवेकशीलता और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को समुचित रूप से समझना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कानून और न्याय की वास्तविक सार्थकता इसी में निहित है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी न्याय मिलने की उम्मीद हो, जरूरतमंदों की आवाज सुनी जाए और प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों की सुरक्षा का विश्वास हो। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज में न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्नातक विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और निरंतर प्रयासों के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करें। विद्यार्थियों की सफलता का आकलन केवल उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान से भी किया जाएगा। शारदीय नवरात्र के लिए हिमाचल के शक्तिपीठ सज चुके हैं। माँ नैना देवी, छिन्नमस्तिका धाम, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, वज्रेश्वरी और चामुंडा मंदिर को भी विदेशी फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। रविवार से यानी कि आज नौ दिन से माँ के नौ रूपों का विशेष पूजन होगा। इस बार 19 अक्टूबर को अष्टमी, नवमी के अनुष्ठान हो सकेंगे। श्री नैना देवी मंदिर में मंदिर के कपाट 21 घंटे खुले रहेंगे। रात 12 से 2 बजे तक मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा मध्याह्न आरती के दौरान दोपहर 12 से 12:30 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। प्रतिदिन करीब 2.5 घंटे मंदिर में दर्शन बंद रहेंगे। शेष समय श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोलते हुए राज्य में अलग अलग श्रेणियों के 11,500 से अधिक पद भरने का फैसला लिया है। आंगनवाड़ी वर्करों, सहायिकाओं, वन मित्रों, स्पेशल पुलिस ऑफिसरों जैसे अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में 100 और सरकारी CBSE स्कूलों में बदले जाएंगे। दिव्यांगता पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। चंबा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। बैठक में जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और बहुउद्देशीय कर्मियों के 4,090 जबकि CBSE स्कूलों में 4,800 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती के दौरान होमगार्ड जवानों को शारीरिक परीक्षा और ग्राउंड टेस्ट से छूट देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले होमगार्ड जवानों को राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए 15% पद आरक्षित और आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। इसके तहत करीब 15% पद होमगार्ड श्रेणी के लिए आरक्षित रहते हैं। इसके अलावा होमगार्ड जवानों को सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में आयु सीमा में भी राहत दी जाती है। मौजूदा भर्ती व्यवस्था में शारीरिक मानक परीक्षा के तहत ऊंचाई और शादी की माप, जबकि शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद जैसी स्पर्धाएं पूरी करना अनिवार्य रहा है। एम्स बिलासपुर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार विस्तार कर रहा है। आने वाले समय में यहां ऑपरेशन थिएटर और कैथलैब स्थापित करने के साथ शिशु स्वास्थ्य केंद्र विकसित किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में वन मैरो ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी जैसे अत्याधुनिक उपचार सुविधाएं भी शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। एम्स बिलासपुर में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शिशु स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और यहां विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की योजना है। इसके अलावा एक केंद्र एडवांस टेलीकेयर नेटवर्क के रूप में भी कार्य करेगा। एम्स प्रशासन की ओर से एम्स में शोध कार्यों को भी बढ़ावा दिए जाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल, शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने। ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम।
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम।
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए। पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: काकी, लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
10: अरे वाह, नौकरी लग गई
9: जी।
10: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
9: अरे काका भी है।
10: अच्छा,
9: काका लड्डू खाओ।
11: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
9: बैंक में काका।
12: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
13: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
12: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
9: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
14: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
13: क्यों भाई?
14: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
13: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
15: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
9: जी।
16: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
17: वही असली तरक्की।
16: एक कदम स्वच्छता की ओर।
18: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना, वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां, जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

शो तो आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम हाजिर हो गए हैं रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ और प्यारे प्यारे गीत। तो इन्हीं गीतों के साथ आपको ये बता दें कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो पूरे गुंजन परिवार की ओर से आप सभी श्रोताओं को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से दुआ प्रार्थना विनती करते हैं कि माता रानी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, सुख लाए, समृद्धि लाए और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। जी हाँ श्रोता, हम सभी जानते हैं कि आजकल के दिन बड़े ही शुभ माने जाते हैं, बड़े सारे रुके हुए काम हम इन दिनों में शुरू करते हैं। कोई घर का काम करवाना हो, कोई वाहन लेना हो और शादी विवाह के काम भी होते हैं जो तय करने होते हैं, वो भी हम इन दिनों में करते हैं, तो श्रोता इन दिनों को बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम माता के इस प्यारे से भजन के साथ।

श्रोताओं, इस प्यारे से भजन के साथ कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और खूब रौनकें आजकल मंदिरों में लगी हुई हैं। जैसे हम घर से आ रहे थे तो सुबह सुबह भजन हर जगह सुनने को मिल रहे थे। और मंदिरों की सजावट की बात करें तो भाई सजावट आजकल देखते ही बनते हैं। बड़े खूबसूरत मंदिर सजे हुए हैं। माता रानी कि मंदिरों में जाने का खुद को भी मन करता है, क्योंकि जब भजन लगे हों तो बड़ा सुकून मन को मिलता है और एक जो है भक्ति का भाव हम सभी में जग जाता है इन दिनों में। और काफ़ी दिनों से इंतज़ार रहता है हमें नवरात्रों का कि कब नवरात्रे आएंगे। अपने घर को हम साफ़ सुथरा करते हैं, अपने मंदिर को साफ़ सुथरा करते हैं। भाई माता रानी ने आना होता है तो माता रानी की तैयारियों में खूब हम भी तैयारियां करते हैं कि माता रानी हमारे घर आए। और बहुत सारे श्रोताओं ने वैसे भी नवरात्रे रखे होंगे, कुछ अखंड ज्योत जलाते हैं, कुछ वैसे ही शाम के समय ज्योत जलाते हैं। तो खूब हमें माता रानी का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी। और एक भगवान ही है जहाँ से हमें सब कुछ मिलता है। माता रानी हमारे दिल की बातों को भी जानती है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है हमारे मांगने से पहले ही वो हमें वो चीज़ें दे देती है। तो माता रानी से संबंधित और भी जानकारी श्रोताओं हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, इस प्यारे से भजन के साथ कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओ, शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन आज चल रहा है और शारदीय नवरात्रों के इन दिनों में हम माँ की पूरे दिल से भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और आज का दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ये दिन त्याग, तपस्या, संयम, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में भक्ति भाव से हम पूर्ण होते हैं और भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करके सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति की कामना भी करते हैं। साथ ही साथ श्रोताओं, माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का स्वरूप होता है। उनके नाम में ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और परम सत्य से तथा चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली से जुड़ा होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या और साधना की देवी माना जाता है। उनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका स्वरूप सादगी, शांति और त्याग का संदेश देता है। साथ ही साथ श्रोताओं, धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी कारण वह धैर्य, आत्मबल और अटूट संकल्प की प्रतीक मानी जाती है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ अभी और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में थोड़ा सा रुकते हैं और भक्ति में माहौल में थोड़ा सा डूबने की कोशिश करते हैं।

श्रोताओ, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आज कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं माता रानी के दूसरे नवरात्रे के बारे में। हम सभी जानते हैं कि आज नवरात्रे का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, और शारदीय नवरात्रे के पावन पर्व के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप की हम आराधना करते हैं, और साथ ही साथ माँ ब्रह्मचारिणी जो है तपस्या, त्याग, धैर्य और संयम की प्रतीक है श्रोताओ, और उनका स्वरूप हमें संदेश देता है कि जीवन में अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो मेहनत के साथ साथ हमें धैर्य और आत्मविश्वास भी रखना होगा। इस पावन अवसर पर हमें ये संकल्प भी लेना है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना है, और अपने जीवन की सच्चाई, सादगी और सकारात्मक सोच के साथ भी हमें जो है अपना कार्य करते जाना है। श्रोताओ, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रों के दिन जब आते हैं तो घरों में और मंदिरों में खूब सारी रौनक लगती है। बड़ी श्रद्धा से हम जो है पूजा अर्चना प्रार्थना विधि करते हैं और सजे मंदिर भी बहुत सुंदर लगते हैं, और माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन हमें ये सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है। जीवन में कठिनाइयाँ आएँ तो हमें घबराने की बजाय उनका साहस के साथ सामना करना है और अपने विचारों में सकारात्मक सोच रखनी है और अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना है। जी हाँ श्रोताओ, नवरात्रि के दिन जो है बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनमें हम अपने रुके हुए काम करते हैं और विधि विधान से हम माँ की पूजा अर्चना करते हैं, माँ के जो है नाम का जप भी करते हैं, उनके जो व्रत की कथा सुनते हैं, और माँ की बात की जाए तो ब्रह्मचारिणी माँ को चीनी मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। धार्मिक परंपराओं में माता का ये प्रिय भोग होता है। साथ ही साथ आरती भी संध्या के समय की जाती है। फूल, अक्षत चंदन और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। पूजा स्थल पर माँ दुर्गा और ब्रह्मचारिणी की तस्वीर स्थापित की जाती है। साथ ही साथ हम सुबह नहा धोकर, स्वच्छ होकर, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर माँ को याद करते हैं। बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं वो मंदिरों में आजकल जाते हैं और माथा टेकते हैं। मंदिरों में भी खूब सारी रौनक होती है। हमारे आसपास के मंदिरों की बात की जाए, जैसे वज्रेश्वरी माता, नंदीकेश्वर धाम, और भी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, नैना देवी है, तो उनमें हम जाते हैं माथा टेकने के लिए। एक श्रद्धा हम सभी के मन में होती है कि इन दिनों ज़रूर श्रद्धालु जो है बड़ी दूर दूर से माथा टेकने के लिए आते हैं और अपनी मन चाही मुरादें जो है माता के आगे रखते हैं, और पूर्ण होने पर भी उनका धन्यवाद हम लोग करते हैं। तो आजकल खूब रौनक लगी हुई है, तो माता रानी से दुआ प्रार्थना विनती यही है कि हमारे श्रोताओं के जीवन में भी ढेर सारी खुशियां दे, सुख समृद्धि, और अपने आशीर्वाद से उन्हें जो है नवाजे। तो इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ कार्यक्रम में हम थोड़ा सा रुकते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा भजन। तो आइए सुनते हैं इस भजन को।

श्रोताओ, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। भक्तिमय माहौल से थोड़ा सा हम बाहर आते हैं, क्योंकि भक्ति भी जीवन में बेहद ज़रूरी होती है, और भक्ति के साथ साथ और कामकाज भी ज़रूरी होते हैं। जब हम कामकाज करेंगे तभी तो महामाई की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। और कार्यक्रम में आज हमें ढेर सारी बातें अपने श्रोताओं के साथ करनी है, तो श्रोताओ थोड़ा सा हम वेदर की ओर रुख करें। तो आज का वेदर है 13 डिग्री सेल्सियस और मौसमी ह्यूमिडिटी बनी हुई है 67%। पिछले कल खूब सारी बारिश हुई है, बारिश की वजह से ठंड भी हो गई है। तो श्रोताओ, इस मौसम में हम सभी को अपना ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, क्योंकि जब बदलता मौसम होता है, शुरुआती मौसम होता है, तो कहीं ना कहीं बीमार हम लोग ज़रूर पड़ते हैं, क्योंकि स्वेटर नहीं पहनते हैं या फिर अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से ठंड लग जाती है। तो हल्की फुल्की ठंड आजकल हो चुकी है, तो ऐसे में हमें सभी को अपना ध्यान रखना है। और दिन के समय अगर धूप लगती है तो जब भी कभी बाहर घर से जाते हैं तो अपने साथ हल्की स्वेटर ज़रूर रखें। धूप लगने पर हम उसे उतार भी सकते हैं, लेकिन ज़रूर पहन कर रखें। आजकल का मौसम ऐसा होता है कि कमरों में बैठे तो हल्की फुल्की ठंड लगती है, वैसे भी ठंड हो चुकी है, तो ज़रूर अपने कपड़ों का ध्यान रखें, फुल स्लीव के कपड़े पहने। और कहीं भी दोपहिया वाहन पर अगर जा रहे हैं तब तो ज़रूर हवा लगती है ज़्यादा, और हवा की वजह से ठंड भी लगती है, तो अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। और फिलहाल श्रोताओं, इस समय हमें रखना है आप सभी श्रोताओं का ध्यान और आप तक पहुंचाना है कार्यक्रम का ये गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। गीत से पहले हम थोड़ा सा बदलते मौसम की बात कर रहे थे, तो खुशनुमा सा मौसम हो गया है, मीठी मीठी सी सर्दी हो गई है, और इस मीठी सी सर्दी में हम सभी को अपने शरीर का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। ऐसे में शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जो है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, इससे सर्दी ज़ुकाम वायरल और एलर्जी का ख़तरा बढ़ जाता है। और ख़ुद को स्वस्थ रखने के लिए कुछ अच्छी छोटी छोटी बातों को हम अपना सकते हैं। इसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना होगा। बहुत सारे लोगों की श्रोताओं ये शिकायत रहती है कि अरे सर्दी हो गई है, पानी पीने को मन नहीं करता है, दांतों में लगता है, ठंड लगती है। अगर दांतों में लगता है श्रोताओं, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, वो हमें अच्छी राय देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि वो पानी लगना बंद हो जाता है और हम पानी को पी सकते हैं। अगर पानी नहीं पियेंगे तो हमारी स्किन में ड्राइनेस आ जाती है और हमारे शरीर से विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकलते। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आपका शरीर अच्छा रहे, आपके शरीर में नमी बनी रहे, तो इसके लिए आप सर्दियों में भी ज़रूर पानी पिए। अगर ठंडा पानी नहीं पिया जाता है तो हल्का गुनगुना पानी आप पी सकते हैं, और कहीं बाहर जा रहे हैं तो उस पानी की बॉटल को आप बाहर भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आजकल बाहर की बात की जाए तो बाहर साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। कई दिनों से टंकियों में पानी भरा होता है, टंकियाँ भी गंदी होती हैं, तो इसलिए साफ़ सुथरा घर से आप हल्का गुनगुना पानी करके ले जाएं, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पिए, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो शुरू बातें और जानकारियाँ हम और भी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल फिर से कार्यक्रम में रुकते हैं और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोताओं, इस वक्त कार्यक्रम में समय होने को है 9:50। तो कार्यक्रम में समय भी हो रहा है समाचारों का, उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा निभा सकते हैं अहम भूमिका। युवाओं से निडर होकर आगे बढ़ने का भी किया आह्वान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के उच्च पर्वतीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का करेंगे शिलान्यास। हैदराबाद में चल रहे ग्रामीण भारतीय महोत्सव में चंबा जिले की जीआई टैग प्राप्त चंबा चप्पल बनी आकर्षण का केंद्र। प्रदेश सरकार इस माह 20वें एशियाई खेलों में पदक विजेता हिमाचल के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से करेगी सम्मानित। और प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ, अगले 24 घंटों में 4 जिलों में अंधड़ व बिजली गिरने का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं में दुनिया की उभरती चुनौतियों का नया व बेहतर समाधान देने की क्षमता है। चेन्नई में एक विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज नई चुनौतियों के समाधान खोज रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि देश के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये दौर युवाओं का है और उनके नए विचार व कड़ी मेहनत भारत के साथ साथ दुनिया का भविष्य भी तय करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने, नए तरीके से सोचने और निडर होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में आज अफसरों की कोई कमी नहीं है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में युवा अहम भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल provide those solutions.
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के उच्च पर्वतीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। इस स्वास्थ्य संस्थान के बनने से जिले में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: केलांग में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के उच्च पर्वतीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करेंगे। इसके तहत भूमि पूजन, शिलान्यास और हिमालय पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके बाद पुलिस मैदान में वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन होगा। कार्यक्रम में केंद्र की वेबसाइट का शुभारंभ और स्मारक डाक आवरण का विमोचन किया जाएगा। इस केंद्र में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों, कठिन मौसम और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर शोध किया जाएगा। इससे लाहौल स्पीति सहित हिमालय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: जीआई उत्पादों को विरासत से बाजार तक ले जाने के लिए नाबार्ड ने कामगारों को एक बेहतर मंच उपलब्ध करवाया है। इसके लिए हैदराबाद में ग्रामीण भारत महोत्सव आयोजित किया गया है। 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के 25 जीआई उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें चंबा जिले की जीआई टैग चंबा चप्पल के कारीगर अनिल कुमार प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी भारत के पारंपरिक ज्ञान, हस्तशिल्प और क्षेत्र विशेष के उत्पादों की समृद्ध विविधता को दर्शाती है। अनिल कुमार ने कहा कि इस महोत्सव में प्रदर्शित की गई चंबा चप्पल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
3: चंबा चप्पल बनाने में जितनी मेहनत की जाती है, वो यहाँ के पारखी देख रहे हैं, वो उसे लेने में काफी इंटरेस्टेड हैं। लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हर प्रोडक्ट को लेने के लिए इतनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं।
0: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जा रही है। प्रदेश भर के शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही संयम, तपस्या और ज्ञान की देवी माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। इस दौरान माहौल भक्तिमय बना हुआ है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।

0: किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार 20वें एशियाई खेल में पदक विजेता हिमाचल खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए इस माह सम्मान समारोह का आयोजन करेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्मान समारोह में इन पदक विजेता खिलाड़ियों को 9 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी टीम की खिलाड़ी रितु नेगी, पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 1-1 करोड़, जबकि पुरुष मैराथन में रजत पदक विजेता सावन बरवाल को 2.5 करोड़, महिला मैराथन में कांस्य पदक विजेता सीमा कुमारी को 1.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा क्रिकेट में स्वर्ण पदक विजेता रेणुका ठाकुर को 1 करोड़ और जुड्डो में प्रतिभागिता के लिए खिलाड़ी इनुन गांबी को 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये निर्णय हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सिरमौर जिले के नाहन, सैनवाला, वर्मा पापड़ी, गुलरिया सड़क पिछले करीब 5 दिनों से भूस्खलन के चलते यातायात के लिए अवरुद्ध है, जिससे यहां आने जाने वाले हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: 8 अक्टूबर को गुलरिया ढांग के पास भारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुई नाहन सेनवाला वर्मा पापड़ी गुलरिया सड़क यातायात के लिए अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। सड़क बंद होने से क्षेत्र की 6 पंचायतों के हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। मुख्य रूप से यहां शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और रोजाना औद्योगिक क्षेत्र जाने वाले कामगारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सड़क बहाली की कोशिशें लगातार जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से शर्मा।
0: प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना निराश्रित बच्चों के लिए सहारा बन रही है। शिमला जिला में इस योजना के जरिए पात्र बच्चों व युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल व आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध करवाकर सम्मानजनक भविष्य की नींव भी रखी जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत जिला शिमला में विभिन्न समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के माध्यम से 0 से 27 आयु वर्ग के 257 बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त जिला में 12 बाल बालिका देखभाल संस्थानों में रह रहे 237 बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के साथ त्योहार अनुदान, ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वस्त्र तथा पौष्टिक आहार जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। यह प्रयास बच्चों और युवाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहयोग देकर शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सामाजिक पुनर्वास की में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि बीते कल अधिकतर क्षेत्रों में बारिश व ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट के चलते ठंड का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में आज अंधड़ चलने और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के भी आसार है। 15 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने की संभावना है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में बारिश बर्फबारी, शिंकुला में फंसे वाहन, 7 डिग्री तक गिरा पारा। पंजाब केसरी के शब्द है, लाहौल स्पीति के शिंकुला टॉप पर बर्फबारी, फंसे पर्यटक। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, अक्टूबर में मौसम कूल कूल, 15 तक बारिश बर्फबारी के आसार। दिव्य हिमाचल ने खबर दी है, सीएम का ऐलान, कांगड़ा मंडी में खुलेंगे नए एनडीपीएस कोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा निभा सकते हैं अहम भूमिका, युवाओं से निडर होकर आगे बढ़ने का भी किया आह्वान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के उच्च पर्वतीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का करेंगे शिलान्यास। हैदराबाद में चल रहे ग्रामीण भारतीय महोत्सव में चंबा जिले की जीआई टैग प्राप्त चंबा चप्पल बनी आकर्षण का केंद्र। प्रदेश सरकार इस माह 20वें एशियाई खेलों में पदक विजेता हिमाचल के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से करेगी सम्मानित। और प्रदेश के अधिकतर भागों में आज मौसम साफ, अगले 24 घंटों में 4 जिलों में अंधड़ व बिजली गिरने का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।

श्रोताओं, समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं, समाचारों से पहले हम बदलते मौसम की थोड़ा सा बात कर रहे थे। तो बदलता मौसम हमारे साथ बहुत सारी दिक्कत और परेशानियां भी लेकर आता है, और अगर हम पहनावे की बात करें तो इसमें पहनावे का भी पूरी तरह से बदलाव हो जाता है। स्वेटर, जैकेट, शॉल और गर्म कपड़े का चुनाव इस सीज़न में हम करते हैं। और साथ ही साथ अगर खानपान की बात करें श्रोताओ, तो खानपान भी पूरी तरह से बदल जाता है। खानपान में भी जो है हमारा पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए भारी मसालेदार तला भुना और फास्ट फूड खाने से हमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। ऐसे में हमें हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, दलिया जो है ताकतवर होता है उसे लेना चाहिए। इसके साथ साथ मूंग दाल की खिचड़ी भी हम खा सकते हैं, ये भी एक बेहतरीन और बढ़िया चीज़ होती है। और इसके साथ साथ अगर हम फलों की बात करें तो विटामिन सी से भरपूर फल हमें खाने चाहिए। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए संतरे, नींबू, आंवले और मौसमी फलों का जो है हम सेवन कर सकते हैं। और हर्बल ड्रिंक्स और कुछ घरेलू नुस्खों को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं श्रोताओं, जिन्हें हम ले सकते हैं। और गले में खराश इन दिनों में होती है, क्योंकि सर्दी की वजह से थोड़ा सा जो सेहत हमारी ठीक नहीं रहती है। और खांसी से बचने के लिए रोज़ाना दिन में 2 बार अदरक के रस में शहद को मिलाकर ले सकते हैं। तुलसी, हल्दी और अदरक की हर्बल चाय का सेवन भी हम कर सकते हैं। और जिन लोगों का थोड़ा सा गला ख़राब हो तो वो लोग आजकल गुनगुना पानी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा गला जो है जल्दी से ठीक हो जाता है। कुछ छोटे छोटे उपाय अपनाकर श्रोताओं, हम जो है अपनी बीमारी को जल्दी ठीक करने में खुद का योगदान दे सकते हैं। और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल और कपड़ों की बात जैसे हम कर रहे थे, तो सुबह और शाम के समय हल्की ठंड होती है और दोपहर में तेज़ धूप लग जाती है। तो ऐसे में सुबह शाम बाहर निकलते समय हल्के गर्म कपड़े हम पहन सकते हैं, फुल स्लीव के कपड़े पहने जा सकते हैं, ताकि हम जो है ठंड से बच सके। तो पंखे और एसी को तो तुरंत हमने आजकल बंद कर देना है, और क्योंकि ठंड लगती है इससे। और फिर से वही बात होती है कि सर्दी जुकाम हो जाता है। थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना है, ऐसे में जो है हमें अपनी स्वच्छता को बनाए रखना है। व्यक्तिगत स्वच्छता जीवन में बेहद ज़रूरी होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता को अपना कर कहीं ना कहीं हम जो है अपना बढ़िया जीवन जी सकते हैं। और एलर्जी से बचाव की बात करें तो हवा और धूल में नमी बढ़ने के कारण अस्थमा और सांस के मरीजों को दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा धूल मिट्टी से बचना चाहिए, ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। और नींद की बात करें श्रोताओं, तो शरीर को अंदर से मजबूत रखने के लिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक हम सोते नहीं हैं तो हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता है। और हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह ही होता है, सारा दिन काम करता है, लेकिन शाम के समय ज़रूरत पड़ती है कि हर कोई चाहता है कि थोड़ा देर या कुछ समय के लिए 7-8 घंटे के लिए आराम कर लिया जाए। वैसे तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे एज बढ़ने के साथ साथ हर किसी का मन दिन में भी करता है रेस्ट करने के लिए, पर कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जैसे हम कार्यालय में होते हैं नहीं सो पाते हैं, तो कुछ देर के लिए हम जैसे लंच टाइम में थोड़ी सी रेस्ट करके भी अपने शरीर को आराम दे सकते हैं। तो शुरू तो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें अपनी दिनचर्या में ध्यान रखना होता है, ख्याल रखना होता है। और जब हम अपना ध्यान और ख्याल रखते हैं तभी तो हम अपनों का भी ध्यान और ख्याल रख पाएंगे। और इस समय हमें हमारे लिए अपने में ज़्यादा प्रिय है यानी अपने श्रोता, तो श्रोताओं का ध्यान रखते हुए आप तक पहुँचाते हैं हम कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो इस समय आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी जानी पहचानी दोस्त सुमन, लेकर हाजिर हुई हूं इस गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम को। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर का दिन भारत और विश्व में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ, जन्म और निधन का साक्षी रहा है। सन 1871 की बात करें तो भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया था। इसके साथ साथ 1914 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर हमेशा के लिए भारत लौटने का संकल्प लिया था। 1940 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश युद्ध नीति के खिलाफ अहिंसक विरोध के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, और 1968 में इक्वेटोरियल गिनी को स्पेन से स्वतंत्रता मिली थी। सन 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति प्रयासों के प्रतीक के रूप में संयुक्त सैन्य अभ्यास

तो इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं अपने स्टूडियो में लेकर कुछ स्थानीय जानकारियां। तो आइए उनको भी आप तक पहुंचा देते हैं। खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी 9.03 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि।

बात राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि 20वें एशियाई खेलों में पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर माह में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। प्रवक्ता ने बताया है कि हाल ही में संपन्न हुई एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी टीम के खिलाड़ी ने भी 1-1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि जो है उन्हें प्रदान की गई है और पुरुष मैराथन में रजत पदक विजेता को भी 50 लाख रुपए और एथलेटिक्स में 1.50 करोड़ रुपए की राशि जो है प्रदान की गई है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप सभी तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूं आपकी दोस्त सुमन। तो इस गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से एक बार आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो हम आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की बात करें। कुछ महान व्यक्ति थे जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। 1888 की बात करें तो पेरिन बेन मुख्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी थे, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। 1923 में हरिश्चंद्र विश्व प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1938 में जन्मे निंदा फाजली, मशहूर उर्दू शायर और गीतकार थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और 1943 में शिवनाथ मिश्रा, भारत के प्रसिद्ध सितार वादक थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और जिन व्यक्तियों का निधन हुआ था उनकी बात आज करें तो 1967 में डॉक्टर राम मोहन लोहरिया, महान समाजवादी विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, उनका निधन आज के दिन हुआ था। 1993 की बात करें तो पी बैंक्ट सुबैया, वरिष्ठ राजनेता और बिहार तथा कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। तो श्रोताओं, ये तो थी आज के दिन की जानकारी। इन जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे ही गीत चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जहन में घूमती रहती है, बहुत सारा दिमाग इधर उधर भटकता रहता है और कभी कभी बीते समय की यादों में भी हम खो जाते हैं। श्रोताओं, बात करें बीते समय की, तो एक समय ऐसे हुआ करता था जब ज़िंदगी जो है बहुत आसान लगा करती थी। ना पैसे की टेंशन थी, ना भविष्य की का डर था, बस दोस्त थे, स्कूल था और छोटी छोटी बातों में खुशी मिल जाया करती थी। उस समय में हम टेंशन फ्री रहा करते थे, बारिश में भीगना अच्छा लगता था, बिना वजह हंसना भी अच्छा लगता था। अब देखो कितनी पाबंदियाँ हो गई हैं कि हंसना हो तब भी हम सोच समझ कर हंसते हैं, क्योंकि हम अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, सियाने हो गए हैं। रात को बिना किसी टेंशन से सो जाना कितना अच्छा उस समय में लगता था, शायद वही असली सुकून था। और समय के साथ साथ बदल गए दोस्त, दूर हो गए वो दोस्त और बढ़ गई हमारी जिम्मेदारियाँ, और मुस्कुराहट के पीछे कई परेशानियाँ छुप गई। आज जब वो पुरानी तस्वीरें हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन दिल में एक दर्द सा रहता है और वो दर्द होता है हमारी यादों का। कहीं ना कहीं अपने बीते समय के लिए भी थोड़ा सा पछतावा होता है कि अरे शायद हम छोटे होते तो अच्छा होता, किसी चीज़ की टेंशन परेशानी नहीं थी। बड़े होने पर बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, कुछ नया मिल जाता है तो पुरानी यादें छूट जाती हैं। उन्हीं तस्वीरों को, उन्हीं पलों को हम कभी याद करते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उन चीज़ों को अपने दिल से भी लगा के रखते हैं। कभी एकांत में बैठे हुए श्रोता हूँ तो उन चीज़ों को, उन पलों को याद करते हैं तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कई बार हम ठहाका भी लगा देते हैं कि अरे वो क्या दिन हुआ करते थे, किसी चीज़ की टेंशन परेशानियाँ नहीं थी। जैसे जैसे बड़े हुए जिम्मेदारियों ने हमें घेर लिया और आज हम कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के बोझ तले जो है दबकर रह गए हैं। जिम्मेदारियाँ भी निभाने पड़ेंगी क्योंकि समय बदल गया है, उम्र बढ़ गई है, उम्र के साथ साथ नए नए रिश्ते मिल गए हैं, तो रिश्तों को निभाना है तो कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। ज़िंदगी हर दिन श्रोता नया पाठ पढ़ाती है और इसी पाठ के साथ ज़िंदगी के सफ़र में हमें भी आगे बढ़ना है। तो फिर से हम बढ़ते हैं और आप सभी तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन अपनी दोस्त सुमन के साथ, और मैं हूँ आज लेकर आई ढेर सारी जानकारियाँ। उन जानकारियों में कुछ स्थानीय जानकारियों की और रुख करें श्रोताओं, तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए लोकतंत्र में न्याय का अर्थ केवल न्यायिक आदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निष्पक्षता, विवेकशीलता और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को समुचित रूप से समझना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून और न्याय की वास्तविक सार्थकता इसी में निहित है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी न्याय मिलने की उम्मीद हो, जरूरतमंदों की आवाज़ सुनी जाए और प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों की सुरक्षा का विश्वास हो। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज में न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्नातक विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कि वे दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और निरंतर प्रयासों के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करें। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों की सफलता का आंकलन केवल उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान से ही किया जाएगा। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को थोड़ा सा यहीं पर रोकते हैं और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: तो इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। श्रोता कार्यक्रम में कुछ और जानकारियां आपके लिए हम लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुंचाते हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रैत में रविवार को स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं विकास बाल विकास विभाग ने संयुक्त तत्वाधान में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में शाहपुर के विधायक तथा उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। कार्यक्रम में चिट्टे के दुष्प्रभावों, उसकी रोकथाम, नशे के खिलाफ सामाजिक सहभागिता की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पूरे हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को संपत्ति को जब्त करने जैसी कार्रवाई की जा रही है। तो श्रोताओ, ये तथी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: Never miss an update from Tips Official.

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम लौट आए हैं तो कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र में बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। एआई के दौरान युवाओं को तकनीकी शिक्षा में दक्ष बनाया जा रहा है, उसके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा में छात्रों, शैक्षणिक संस्थान तथा रोजगार प्रदाताओं को एक

एकीकृत प्रणाली के माध्यम से जोड़कर तकनीकी शिक्षा विभाग में तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल शुरू किया गया है तथा अपनी राह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के प्लेसमेंट और भर्ती प्रक्रिया को सरलतर तथा प्रभावी बनाया जा रहा है। तकनीकी रोजगार सेतु पोर्टल युवाओं तथा उद्योगों के बीच में एक प्रभावी सेतु काम कर रहा है। ये पोर्टल एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां छात्र अपनी प्रोफाइल, अपना कौशल, क्षमताओं का प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा प्रमाण पत्रों का विवरण अपलोड कर सकते हैं। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियाँ थोड़ा सा यहाँ पर रोकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जानकारियाँ साझा की हैं। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर लगभग हम आ पहुँचे हैं, तो थोड़ा सा चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। अगली बार नई बातों, नई जानकारियों के साथ, नए दिन के साथ फिर से आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल, शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने। ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम।
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी।
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका है, लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ की नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मांग गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
2: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
5: क्यों, क्या हुआ?
2: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
5: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
6: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

हो गए हो कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: सम कहा, तुम कहा, हम कहा, ताल कहा, सम कहा, तुम कहा, हम कहा, तेरे कर तुम ना कर तुम, तेरे कर तुम ना कर तुम हम तुम लता हाथ हिफाजत लता हाथ पता पा मेरा कस करामत
1: ताते चेता ताते चेता ताते चेता ताते चेता थैया थैया थै तकटा दुम तकटा दुम तकटन्या
2: सपने में देखा सपना ओ सपने में देखा सपना।
3: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल। शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने। ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: पड़ी मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है, पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी,
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ की नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
15: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
16: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां, जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
2: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
5: क्यों, क्या हुआ?
2: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
5: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
6: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

0: नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें, अंगदान जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ शर्मा और मैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम भी डॉक्टर सौरभ शर्मा ही है। ये किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में कार्यरत हैं। सो आज हम इनसे बात करके जानेंगे कि किडनी की समस्याएं क्या होती हैं और किन समस्याओं पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और किन समस्याओं से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम अपने आज के मेहमान का स्वागत करते हैं। डॉक्टर सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद सौरभ जी, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया।
2: डॉक्टर साहब, हमारे मरीजों में अक्सर ये क्वेश्चन आता है हमारे पास भी, या जो सामान्य मरीज रहते हैं वो भी अक्सर घबराते हैं कि किडनी की समस्याएं होती क्या है, कब किडनी की समस्या बहुत जटिल हो सकती है और कब हमें छोटे मोटे सिम्टम्स पे ध्यान नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप हमारे मरीजों को या हमारे श्रोताओं को बताएं कि किन समस्याओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है और किन समस्याओं को सीरियसली लेने की ज़रूरत है।
3: हाँ जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो कि बताते हैं कि हमको तो कोई दिक्कत हुई नहीं थी और अब जाके हमको एकदम से पता लग गया कि हम किडनी की समस्या से पीड़ित हैं और वो भी ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमको डायलिसिस कराना पड़ेगा। बहुत मरीज ऐसे आते हैं। तो मैं आपको पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि जो किडनी के रोग हैं उसका पता हमको कैसे लगता है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो उसमें हमको पेशाब के टेस्ट से, यूरिन एनालिसिस से, या फिर बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस जिसमें कि क्रिएटिनिन और यूरिया होता है, उससे पता लग पाता है कि किडनी की समस्या किसी को है। इसके अलावा जो तीसरा टेस्ट होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में किडनी का क्या साइज है, उसकी इकोजेनिसिटी क्या है, उससे भी पता लग जाता है कि किडनी की समस्या किसी को है या नहीं। तो अब आते हैं हम सिम्टम्स के ऊपर, जिसको कहते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स जो हैं जिससे पता लग जाता है कि हाँ किसी को किडनी की समस्या है। तो सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो है पैरों में सूजन आना। तो लोगों के, आपने देखा है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं लंबे समय से, उनके पैरों में सूजन आने लग जाती है। तो एक पहला एक साइन होता है कि हाँ किडनी की समस्या अब उभर के आ रही है और उनको डॉक्टर के पास जाके इस बारे में बताना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो किडनी के पेशेंट हैं वो किडनी की समस्या से शिकार होते हैं डायबिटीज़ के कारण और ब्लड प्रेशर के कारण। तो अगर शुगर बढ़ रही है, लंबे टाइम के जो शुगर के मरीज हैं, शुगर बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, तो ये मान के चलिए कि कुछ समय में आपके गुर्दे पे भी असर आ ही जाएगा। तो
2: अगर किसी की शुगर है और वो मेंटेन करके चल रहे हैं, या किसी का ब्लड प्रेशर है और वो एक अपनी टाइम पर चेकअप करवाते हैं, टाइम पर अपनी दवाइयाँ लेते हैं और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके चल रहे हैं, तो उनको फिर कोई खतरा नहीं है, या फिर उनको खतरा है लेकिन बहुत धीरे है ये चीज़ डेवलप।
3: जी जी, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। क्या है कि जो लंबे समय से जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर है, जो कंट्रोल भी रह रही है, मान लो शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल चल रहा है, तो भी ये मान के चलिए कि कुछ समय बाद, मान लो 10 से 15 साल में शुगर के मरीज को, ब्लड प्रेशर के मरीज को जो है गुर्दे पे कुछ असर तो आना शुरू हो ही जाएगा। तो उसके लिए उनको नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लेती रहनी चाहिए, साल में एक बार सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए ताकि समय रहते पता लग जाए कि आप मतलब पहली स्टेज में ही पकड़ में आ जाए ताकि उसको रोक के रखा जा सके। आजकल ऐसी दवाइयां हैं जिनसे कि फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में ही उसको पकड़ के रखा जा सके, तेज़ी से वो खराब ना हो।
2: जी, और अगर किसी को ऐसे एकदम से शुगर या ब्लड प्रेशर मेंटेन ना होने की वजह से किडनी की समस्या उभर कर आती है, तो उन लोगों के लिए फिर आगे के क्या रहता है?
3: तो ऐसे मरीजों को घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो एंग्जाइटी, टेंशन, इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि कोई समस्या अगर आई है तो उसके इलाज भी आपके पास रहते हैं। तो ऐसे मरीज जिनको किडनी की समस्या आ गई है, ऐसे मरीजों को सबसे पहले तो एक किडनी के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, सारे टेस्ट करवाने चाहिए, ये पता करना चाहिए कि कारण क्या रहा किडनी खराब होने का, उस कारण का निवारण करना चाहिए, जिसके अंदर एक किडनी बायोप्सी के की भी एक टेस्ट है जो कि कराना पड़ जाता है, और जिससे मैंने देखा है कि कई मरीज जो हैं उससे बचते हैं कि नहीं हम बायोप्सी नहीं कराएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही सेफ टेस्ट है। इस टेस्ट से ये पता लग जाता है कि किडनी की समस्या किस चरण पे पहुंच चुकी है,

0: समय रहते, क्योंकि समय रहते हम ये पता कर सकते हैं कि इसका क्या इलाज है, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं किडनी की जिसका हम अगर किडनी बायोप्सी से उसका सही डायग्नोसिस हो जाए तो सही डायग्नोसिस पे उसका सही ट्रीटमेंट हो जाता है और वो समस्या से पूरी तरीके से वो बाहर भी निकल आते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने और सुनी है कि मतलब मैं भी प्रैक्टिस में हूँ तो मैं भी ये ऑब्जर्व करता हूँ कि लोगों को कभी कोई बुखार होता है या दर्द होता है तो डायरेक्ट केमिस्ट के पास जाकर या मेडिकल शॉप पर जाकर दवाइयाँ ले लेते हैं और उनका सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये कहाँ तक एक किडनी ट्रांसप्लांट की स्पेशलिस्ट की हैसियत से कहाँ तक ये खतरनाक है और कहाँ तक सेफ है?
0: देखिए, आप जैसे आप देखते ही हैं कि आजकल ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं, एक तो दो तरीके के ड्रग्स होती हैं, शेड्यूल्ड ड्रग्स जो कि कोई भी जो केमिस्ट है वो ऐसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आपको दे नहीं सकता है। एक ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं जैसे कि कोई बुखार की गोली, दर्द की गोली दे देना, वो ओवर द काउंटर ड्रग जो है कोई केमिस्ट आपको दे सकता है, उसके लिए उसको पास अधिकार होता है देने का। पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी मरीज जो है जिसको कोई दर्द है या फिर मान लो कोई किसी प्रकार से वो पीड़ित है, तो ऐसी दवाइयाँ, कई सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि गुर्दे पे सीधा असर कर देती हैं, जिनमें से दर्द की गोलियाँ जो हैं वो काफ़ी सबसे ज़्यादा जो है दर्द की गोलियों से ही ये चीज़ उत्पन्न होती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे मरीजों को एक डॉक्टर्स की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर की सलाह लेके ही वो सही दवाई लें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ ऐसी होती हैं जो कि दवाई लेने के बाद भी सही नहीं होती हैं। उनके लिए एक करेक्ट डायग्नोसिस पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है और ऐसी दवाइयों से बच के रहना बहुत ज़रूरी है जो कि गुर्दे को नुकसान करती हैं।
1: जी, मैं अपनी तरफ से भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये पता है कि आपको शरीर में जो दर्द है वो थकान की वजह से है, तो उसका सिंपल सा इलाज है कि आप थोड़ा सा रेस्ट लें, ना कि दवाइयों के ऊपर निर्भर हो जाएं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही सही बताया आपने, क्योंकि आप अभी इस दौरान हम देखते हैं कि लोगों को इतना, जैसे अगर हम दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो लोग काफ़ी सुबह से शाम तक काम में बिजी रहते हैं और ऐसे में उनके पास खुद के लिए समय बिल्कुल मिलता ही नहीं है, और ना वो अच्छे तरीके से व्यायाम कर सकते हैं, ना अपने डाइट सुचारू रूप से ले सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है जिसके लिए हम खुद के शरीर को टाइम देना बहुत ज़रूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
0: जी धन्यवाद।
2: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आँखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आँखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का, कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही फ्लैश करिए और हमारा साथ दीजिए।
4: दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों,

0: हम वापस आ गए हैं अपने इस छोटे से अंतराल के बाद। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सौरभ शर्मा से, जो कि किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। सो डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपने कुछ कॉमन समस्याओं के बारे में, कॉमन लक्षण जो रहते हैं, सिम्टम्स रहते हैं, उनके बारे में बताया। अब अगर हम एडवांस स्टेजेस की बात करें कि जिनको ये निर्धारित हो चुका है कि इनको किडनी डिसीज हो चुकी है, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, इलाज से जुड़े या फिर उनकी जो रोग है उसकी रोकथाम के लिए या आगे ना बढ़े उस चीज़ के लिए? कुछ स्टेजेस भी होती हैं
1: जी,
0: उन स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा।
1: हाँ, तो क्या है कि जो हमारी किडनी की प्रॉब्लम है जो लंबे समय से है, तो उसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं। क्रोनिक का मतलब लंबे समय से किसी किडनी की प्रॉब्लम का होना। तो क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर हम 5 स्टेजेस में उसको डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2, स्टेज 5। तो स्टेज 5 जो है वो एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं, मतलब कि किडनी की जो एंड स्टेज आ जाती है। तो जैसे कोई मरीज आता है, तो ये ज़्यादातर मरीज जो आएंगे ओपीडी में दिखाने के लिए आते हैं, वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में पता लगना किडनी की बीमारी का बहुत बहुत ही मुश्किल होता है।
0: अगर आप रेगुलर चेकअप नहीं करा रहे हैं,
1: अगर रेगुलर चेकअप नहीं करा रहे हैं, तो क्योंकि ऐसे सिम्टम स्टेज 2, 3 में तो आते ही नहीं है। जब वो स्टेज 4 या स्टेज 5 में पहुँच चुका है, तब जाके इसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो जब आप स्टेज 4, 5 में डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तो डॉक्टर आपको ये बताएंगे कि आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस हैं जो आप करवा सकते हैं इस स्टेज में। वो है या तो डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट। जो डायलिसिस है वो भी 2 तरीके का होता है, एक तो खून का डायलिसिस जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, और एक पेट का डायलिसिस जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। ट्रांसप्लांट कहें तो ट्रांसप्लांट भी हम 2 तरीके से करवा सकते हैं, एक तो लाइव डोनर, दूसरा डिसीज्ड ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन, जिसको हम कैडेवरिक ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं। तो लाइव डोनर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइव डोनर वो आपके परिवार से ही कोई ना कोई आपको देता है, जिसमें आपके माता पिता अगर उनकी उम्र 60 साल से कम है, या आपके भाई बहन, या फिर बच्चे, या फिर वाइफ। और अगर हम कहें डिसीज डोनर, तो डिसीज डोनर के लिए ऐसे जो लोग हैं जो जिनका लंबी कोई बीमारी के कारण, या फिर कहें हम लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो अपनी जान खो बैठे हैं और ब्रेन डेड हैं, ICU में एडमिट हैं, वो अपना गुर्दा दान कर देते हैं, तो हम वो 5 से 6 लोगों का भला करके जाते हैं जिनको अपना उनका अंग उनको मिल जाता है।
0: जैसा आपने बताया कि जो कैडेवर ऑर्गन डोनेशन है, सो हमारे श्रोताओं को आप ये भी बताइए कि कैडेवर ऑर्गन डोनेशन का महत्व कितना है, क्योंकि हमारे देश में देखा जाता है कि बहुत सारी सामाजिक भ्रांतियाँ इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं अंगदान से, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
1: जी, आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है। क्या होता है कि हम देखते हैं कि ऑर्गन जो कैडेवर डोनेशन हम कह रहे हैं, तो होता क्या है कि जो अगर हम अमेरिका की तरफ देखें, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज्ड डोनर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और लाइव डोनर ट्रांसप्लांट बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ एक स्थिति जो है वो एकदम उल्टी है, लाइव डोनर सबसे ज़्यादा होते हैं और डिसीज डोनर का जो रेशियो है बहुत ही कम है, जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों में कुछ भ्रांतियाँ हैं, और लोगों में एक तो कहूँगा मैं जागरूकता की भी कमी है। तो सबसे पहले तो हम सबको, मैं तो जितने भी मरीजों के रिलेटिव हैं सबको भी बोलता भी हूँ, और जो भी मुझे मिलता है उनको भी बोलता हूँ कि हम सबको ऑर्गन डोनेशन की प्लेज लेनी चाहिए। प्लेज लेके लेने से क्या होगा कि अगर हम अपना इस शरीर को त्यागते हैं, तो उस समय हमारे जो अंग हैं वो किसी के काम आ जाएं, तो उससे बड़ा कोई दान मैं कहूँगा कि नहीं हो सकता है। तो अंगदान जो कहते हैं कि अंगदान महादान, वो बिल्कुल सही है। अंग देना से ज़्यादा बड़ा दान कोई भी नहीं हो सकता है। और इसका एक सबसे बड़े उदाहरण जो है, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा जिसके लिए कहते हैं कि जो भ्रांति है उसको तोड़ने के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे जैसे जो हमारी हिंदू मिथोलॉजी है, उसमें मैं कहूँगा कि जो रेसिपिएंट है, सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है रेसिपिएंट का, वो गणेश जी हैं, जिनको कि एक जब
0: हाथी का
1: जो सिर है वो उनको लगाया गया था। तो सबसे बड़ा जो उनका एग्जाम्पल है वो गणेश जी हैं, ये मैं सबको बोलता हूँ। और जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल डोनर का है, वो है जो हम कहते हैं कि व्रज जो बनाया गया था, वो वज्र जो बनाया गया था, जो दान किया गया था, वो जिन ऋषि ने किया था,
0: उनका नाम ददीची।
1: हाँ, ददीची जी। तो वो सबसे बड़े डोनर थे जिन्होंने अपना पूरा बोन डोनेशन किया, उससे व्रज का निर्माण किया गया और असुरों का नाश किया गया।
0: जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपने पूरे शरीर का दान किया, और फिर उनकी हड्डियों से वो वज्र बना जिस राक्षसों का संहार किया गया। डॉक्टर साहब, कई बार लोग जो लिविंग डोनेशन करना चाहते हैं, जब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और वो इतना वेट नहीं कर सकते कि डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन के लिए वो किडनी मिलने का वेट करें, तो उनको लिविंग ऑर्गन डोनेशन करना पड़ता है। तो कई बार उनके मन में भी डाउट होता है, उनके फैमिली मेम्बर में जो डोनर है, कि हमारी लाइफ स्टाइल डोनेशन के बाद क्या होगी, कैसी होगी, क्या हमें भी कोई समस्या से गुजरना पड़ेगा किडनी को, क्योंकि एक किडनी के साथ कितने दिन हम जिएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आप श्रोताओं को बताइए।
1: जी बिल्कुल, क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि किसी ने अगर कोई लाइव डोनर किसी के पास है, कोई मान लो कोई किसी की वाइफ किसी को दे, किसी हस्बैंड को दे रही हैं अपना गुर्दा, तो होता क्या है कि डोनेट करने से पहले उनके इतने सारे टेस्ट किए जाते हैं और ये देखा जाता है कि किसी प्रकार से वो किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। तो अगर वो पीड़ित हैं तो उनका गुर्दा नहीं लिया जाता। और हमारे पास भगवान ने हमें दो गुर्दे दिए हैं, उनमें से अगर हम एक ही गुर्दे पर रहते हैं तो हम अपना पूरा जीवन जो है सुचारू रूप से जी सकते हैं। जितना हम जीवन लेकर आए हैं वो तो लेके जाएंगे ही, तो एक गुर्दा बहुत होता है जीवन के लिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा कि जो पैदा ही एक गुर्दे के साथ हुए हैं वो भी अपना अपनी पूरी उम्र लेके जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि और कि जो अपन कहते हैं कि रिसर्च स्टडीज़ वगैरह इतनी सारी होती हैं, तो उनमें भी ये देखा गया है कि जिन्होंने जो डोनर्स हैं, डोनर्स की उम्र जो नॉर्मल पॉपुलेशन की उम्र है उससे ज़्यादा पाई गई है। क्यों? क्योंकि उनके इतने सारे टेस्ट करके देख लिया जाता है कि किसी प्रकार से वो पीड़ित नहीं है, उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। तो वो इस तरीके से तो निश्चिंत ही रहना चाहिए उन्हें कि वो किसी प्रकार से डोनेट करने के बाद कोई उनको बीमार हो जाएंगे या उनका जीवन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है और उनको इसके लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए और आगे बढ़ के उन्हें अपने परिवार परिजन की जान बचानी चाहिए।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले हमने डॉक्टर सौरभ से जाना कि किडनी की समस्याएं क्या होती हैं और कॉमन जो लक्षण क्या होते हैं और कैसे एक किडनी का मरीज अपनी इस समस्या को रोक सकता है और इस प्रोसेस को डिले कर सकता है, तो अपने रोग की जो बढ़ने की क्षमता है उसको डिले कर सकता है। सो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप ये भी बताइए कि जैसे आपने कैडेबल और लिविंग ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताया, सो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में कितने मरीज ऐसे हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या किडनी की समस्याओं से, उन समस्याओं से जो 5 स्टेज और 4 स्टेज में आती हैं, कितने ऐसे मरीज हमारे देश में हैं और कितने ट्रांसप्लांट हमारे देश में पूरी होते हैं?
2: हाँ जी, ये आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया है। होता क्या है कि हमारे जो देश में, मैं कहूँगा कि अगर 80 लाख मरीज डायलिसिस पे हैं तो उनको सबको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, अगर उनकी उम्र 60 साल से कम है। और एक बड़ा रेशियो 70-80% लोग जो हैं उनकी उम्र 60 साल से कम की है, तो मैं कहूँगा इतने लोग जो हैं उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। पर होता क्या है कि सबको गुर्दा मिलना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिसीज ऑर्गन डोनेशन जो प्रोग्राम है हमारा, वो इतना बड़ा, इतने लेवल पे नहीं पहुंच पाया है कि सबको एक गुर्दा मिल जाए। पर हमारी जनसंख्या को देखते हुए और जो हमारे, मैं कहूँगा कि जो इतनी जनसंख्या है, तो उस हिसाब से अगर हर व्यक्ति ये प्लेज ले ले कि हाँ मैं ऑर्गन अपने, मैं मृत्यु के बाद अपने ऑर्गन डोनेट करूँगा, तो ये समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और इसके लिए मैं सबको प्रेरित भी करना चाहूँगा कि सभी एक ऑर्गन डोनेशन की प्लेज लें, जो कि बड़ा आसान है। आप नोटो की वेबसाइट पर जा सकते हैं और जाके एक प्लेज फॉर्म, जिसको भरने में केवल 3-4 मिनट का समय लगता है, वो भर सकते हैं और हम हमारे देश को इस समस्या से निजात दिला सकते हैं।
1: लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि समस्या का निर्धारण से बेटर है कि उस समस्या को उत्पन्न ही ना होने दें। तो हेल्दी लाइफ जरूर आप जिए, आप लोग एक्सरसाइज करें, या अगर आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप बहुत छोटे छोटे से हैक्स अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएं ताकि आपको थोड़ा बहुत चलना फिरना डेली की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो हो सके। 15 आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट अपने आप को रात में या सुबह ऑफिस जाने से पहले ज़रूर दें, थोड़ा सा व्यायाम करें, और ताकि अपने जो शरीर की डेली की जो रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज की वो पूरी की जा सके। बाहर खाना अवॉइड करें ताकि हेल्दी रहें और किडनी की समस्याएं आपको हो ही नहीं, तो उस चीज़ से भी हम इस रेशो को कम कर सकते हैं जितने लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। मीठा कम खाएं, आर्टिफिशियल शुगर से बचें या सिंथेटिक शुगर जो होती है उससे बचें, नेचुरल शुगर का उपयोग करें जो फ्रूट्स में आती है या गुड़ में आती है, आप इंटरनेट पर इजीली इस पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ कह सकते हैं।
2: हाँ, तो मैं पहली बात तो जो आपने अभी बताई है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो सबसे पहले तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, जिसके अंदर रेगुलर एक्सरसाइज करना, खाना जो है हेल्दी फूड खाना, जिसके प्रोसेस्ड फूड से बचना, नमक कम से कम उपयोग करना, मीठा कम से कम उपयोग करना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना। तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर रहेगी तो ऐसे में आप जो हमारे जो किडनी की समस्या के सबसे बड़े जो, मैं कहूँगा, कारण हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर, इनसे बच के रह पाएंगे और आपको समस्या होएगी ही नहीं। और दूसरा, जो एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ऑर्गन डोनेशन की प्लेज लेनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। शो तो खत्म हो गया लेकिन मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। जस्ट आपने अभी बोला नमक कम खाना, तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि हम नमक खाएं ही ना, तो कितना नमक दिन भर की जो हेल्दी रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है और कितनी ओवर यूज के रूप में मानी जाती है?
2: हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा जो एक तरह से कहेंगे कि इंडियन जो हमारी हैबिट है वो ज़्यादा नमक खाने की है। और जो भी आप प्रोसेस्ड फूड और बाहर जाके खाना खाते हैं वो तो नमक से भरा पड़ा होता है। तो जो हम एक हेल्दी जो कहेंगे उसको कहते हैं 5 ग्राम से कम नमक लेना,
1: डेली 5 ग्राम
2: से कम। पर मैं मानता हूँ इसको नापना बड़ा मुश्किल है, पर आप ये मान के चलिए कि जितना खाना हम खाने में, जो मतलब कहते हैं कि स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक जो खाने में डलता है वो बहुत होता है। ऊपर से नमक नहीं छिड़कना चाहिए। आप सलाद में नमक छिड़क लेते हैं और फल फ्रूट पे भी नमक छिड़क लेते हैं और कुछ पीते हैं तो उसमें भी नमक डाल लेते हैं, तो ये जो ऊपर से नमक डालने की हैबिट है वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और स्वाद अनुसार जितना आप सब्जियों में डालते हैं, वो बहुत होता है। इसके अलावा जो फल फ्रूट आप खाते हैं उसमें नेचुरली नमक भी होता है, सलाद खाते हैं उसमें नेचुरली नमक भी होता है, तो ऊपर से कोई नमक ना डालेंगे तो भी इतना ही बहुत होता है।
1: धन्यवाद डॉक्टर सौरभ, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी और मुझे भी कुछ जानकारी आपसे सीखने को मिली।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बताया कि आयोग ने पिछले 33 वर्ष में 24 लाख से अधिक मामले दर्ज किए और 23 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है। वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और 12 खंभा रोड। इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि परस्पर जुड़ी इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग केवल कूटनीतिक विकल्प नहीं है, बल्कि ये दुनिया की शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि वैश्विक सहयोग का मूल मंत्र साझा हितों को पहचानना, उनका सम्मान करना और उन्हें सामूहिक कार्रवाई में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें हथियारों और तकनीक से लेकर वर्दी, उपकरण और प्रशिक्षण तक सभी क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था, जो लगभग एक दशक में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि वो परिवार के संपर्क में है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 506 अंक गिरकर 71,967 और निफ्टी 128 अंक लुढ़ककर 22,393 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
1: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
2: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
3: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
4: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
3: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
4: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम सुन रहे हो तुसी रेडियो गुंजन धर्मशाला ते। आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल। शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने। ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: अनी मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम।
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं वो तो दिखाइए है।

0: ये क्या है? ये तो खोटा सिक्का है।
1: और ये क्या है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
2: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
0: तुम क्या खड़ा हो?
2: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
3: ले जाएं, पक्का?
2: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
4: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
5: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
6: शालू
7: मारे ना तो
6: करवा ले। काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
7: अरे वाह, नौकरी लग गई
6: जी।
7: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
6: अरे काका भी है।
7: अच्छा,
6: काका लड्डू खाओ।
8: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
6: बैंक में काका।
9: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
10: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
9: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
6: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
11: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
10: क्यों भाई?
11: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
10: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
12: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो
6: जी।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
14: वही असली तरक्की।
13: एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां, जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते,

0: उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
1: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
2: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल मैं बात करता हूँ।
3: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
4: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
3: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
4: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

कानूनी दशमलव तो मेगा हर्ट्स पर ये है तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दाई प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी नमस्ते कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ी होने ने कने

0: ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला इसी भजन कने हाँ अपने कार्यक्रम का आगाज जड़े से कि तय कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ियों ने न कने श्रोता जरूर अहाँ तक व्हाट्सएप के माध्यम ने अपनी जड़ा फरमाइशा न से पहुँचा देने कने अहाँ भी शुरुआत जड़े से करी थी है कने इसी शुरुआत करने तो हाँ सारे भी कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ी सकते कने अहाँ कने गलबात जड़े से जरूर करी सकते। 12 अक्टूबर 2026 की अहाँ गल करिए धार्मिक कने जड़ा अध्यात्मिक दृष्टि ते जड़ा बेहतर खास दिन आज अहाँ बना दिन शारदी नवरात्रे का जड़ा दूसरा जड़ा दिन है अज कने जड़ा ब्रह्मचारिणी माता जी जड़ा ब्रह्मचारिणी माता जी हैं तिना जो समर्पित है तेसी कने तो हाँ भी पूजा पाठ जड़ा से पूरी श्रद्धा भाव ने किता होना है कने अपना जड़ा दिने की शुरुआत है से एक प्यारी दे सकारात्मक सोच कने कीती होनी है कने अहाँ भी अपनी सकारात्मक सोच लेकर ही तुहां तक पुजी हो न कने तुहां सारे भी इंतजार जड़ा है से जरूर करते हैं कि कालू दिया 2 बजते हैं कने कालू दिया तुहां सारे इस कार्यक्रम कने जुड़ते हैं तो अशोता जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम कने जुड़िया जुड़ने वास्ते जड़ा अहां दा नंबर है से तुहां तक फ्री ते अहां पहुँचाइंदे न नंबर है 7018117091 नंबर तुहां तक पहुँचाईता है कने श्रोता जड़ा ने से अहां कने जुड़ चुके हैं कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न
1: स्वागत है जी ठीक ठाक
0: जी पहले तो जो नवरात्रे दिया ढेर सारी शुभकामनाएं उन जी
1: कौन जी बढ़िया बढ़िया मुबारक
0: जी का क्या काम कर तुहां आज छेड़िया क्या करा दे आज
1: क्या काम कर छेड़ मा और रोटियां की खादी है
0: जी
1: ज्यादा कर सब मनिया दा फिक्र होंदा
0: जी जी
1: जी
0: और घर सारे ठीक ठाक हैं जी
1: हाँ जी
0: जी नोइता जी
1: हाँ कोई नोइता जी नहीं
0: जी अच्छा कोई नोइता जी नहीं तो कलकना मौसम तो बड़ा ही बेहतर रहा जी
1: कल तो पूरा दिन गर्म रहा मेरे बिस्तरे जी रखा
0: जी जी कलकना दिन तो बड़ी ज्यादा बरखा हुई ना जी
1: हाँ

0: खरी धूप निकल गई।
1: आज तो बड़ी प्यारी धूप खिली हो ना जी बाहर।
0: जी
1: तो माया जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनने कुंदे फरमाइश है तो होंगी।
0: हाँ जी फिर मैं तो ज्वाला माई आ गई कांगड़े दे मोड़े मोड़े।
1: जी ज्वाला माई आ गई कांगड़े दे मोड़ा मोड़ा। जी तो सारिया ही जेड़ा जितने भी यहाँ दे मंदिर हैं चाहे से कांगड़े दा मंदिर है चाहे ज्वाला जी दा मंदिर है चाहे चमंडा माता जी दा मंदिर है तो रौनक वाला जेड़ा माहौल ऐसे जरूर बने आना है ना जी।
0: आंजी, आंजी,
1: आंजी। जी जी जी जी तो जरूर तो हुंदी जेड़ा फरमाइश है से तो हुंदा पहुंचा दें जी चुनने वास्ते। धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद धन्यवाद जी थोड़ा
1: जी। ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दोष शशि कन्ने फिर यहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं कन्ने तुह तक अगली जेड़ा फरमाइश है तिहा जो पहुँचा देना।

कानवी दशमलव तोमी का हर्ट्स पर ये तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला इसी कने तुहा सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया भजन प्यारी देव फरमाइश फिर यहाँ वापिस पहुँची होना अपनी गलबात ऊपर कने तुहा सारे भी मेरी गलबात कने जरूर जुड़ी होने न कने जिहड़ा फरमाइश है यहाँ तक पहुँची होवे व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का ना है शमशेर सिंह जी कने इसी कने से रहने वाले न दरगाटा ते तो जरूर तिना तक अहाँ ये भजन फरमाइश पहुँचाई कने तुहा सारिया भी इंजॉय की अपनी गलबात उपर अहाँ वापिस आई आते न 12 अक्टूबर की गलबात करिए हर दिन अहाँ वास्ते खास होंदा तो दिने की अहाँ शुरुआत जिहड़ा से सकारात्मक सोच कने करते न क्योंकि जिहड़ा सकारात्मक सोच है से अहाँ अगर हमेशा अपने जिहड़ा विचार है से सकारात्मक रखते न तो ही अहाँ कुथी ना कुथी अपने जीवन जो सफलता की ओर लेकर जाते न सकारात्मक विचार दे बड़े सारे फायदे न कने अगर अहाँ नकारात्मक विचार अपने अंदर रखते न तो से कुथी ना कुथी अहाँ जो नुकसान जिहड़ा न से जरूर देकर जाते न तो हमेशा सकारात्मक सोचा अगर अहाँ सकारात्मक सोचते न तो अहाँ का जिहड़ा स्वास्थ्य है सभी ठीक रहिंदा अहाँ तनाव मुक्त रहिंदे न कने बाकी जिहड़ा काम मन सभी अहाँ अच्छे तरीके ने जिहड़ा है से करी पाते न तो इसी कने अहाँ फिरी ते थोड़ा दी आग्या वरदे न कने तुहां जो लेकर चलदे न अगली फरमाइश की ओर

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देन अपनी रेडियो तो शशि कने दर्शोताओं सकारात्मक सोच चुनौतियाँ दा जिड़ा हाँ जो कई बार अवसर जिड़े से मिलता है तो हाँ थोड़ा दिया घबराई आते हैं या डरी आते हैं कि यहाँ ते जिड़ा अहाँ दे जीवन च समस्याएं होती हैं ना तिना दा हाँ सामना जिड़े से किस तरीके ने करने दर्शो तो जालू भी कोई समस्या तो हाँ सामने आती है या तो हाँ तिस पर सोचने दे बजाय तिस पर काम करना शुरू कर देना या ये सोच देना कि नहीं ये जड़ा काम मैं से यहाँ करना है या हाँ कई बार भी सोच दे कि ये समस्या हाँ ऊपर ही कई आई कने हमेशा हाँ कुछ ना कुछ ये भी सोचते हैं कि अहाँ दी ही जड़ा किस्मत है से खराब है या बड़िया सारिया हाँ सोच विचार जड़ा है से ले करी बैठी आते हैं या कुछ भी हो जाता है तो हाँ नकारात्मक सोचना जड़ा है से शुरू करी देन दर्शो तो हर जितनी भी समस्याएं आनियां ना अहां दे जीवन च या परिस्थितियां जेड़ा भी अहां दे जीवन च आनियां ना से अहां जो कोई ना कोई सीख जेड़ा है से जरूर दे करी जानियां ना कने अहां तिना ते क्या सीख लैंदे न से अहां पर निर्भर करता है क्योंकि सीखना जरूरी है सीख लैना जरूरी है। जिंदगी है जिंदगी च हर दिन समस्याएं आनियां ना क्योंकि उतार चढ़ाव जेड़ा है से जिंदगी च चलिया रहिंदा अगर अहाँ उतार चढ़ाव जिंदगी चाहते हैं ना ताई अहाँ तिना ते कुछ ना कुछ नया जड़ा से सीखते हैं कने अगर उतार चढ़ाव जिंदगी च ना हो तो हाँ कुछ भी जड़ा से अपने उतार चढ़ावा ते कुछ भी नहीं जड़ा से सीखी पाते तो सकारात्मक सोच दे दिखा कितने सारे फायदे हैं अगर अहाँ नकारात्मक ना सोची करिए अगर अहाँ सकारात्मक सोच दें तो कुछ ही ना कुछ ही अहाँ अपने जीवन जो सफलता दी ओर जरूर ले करी जाते हैं तो इसी कने अहाँ भी अपने कार्यक्रम का जेड़ा माहौल है उस जो चेंज कर देना कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तो तक पहुंचा देना।

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो तुहां सारे प्यारा दिया भजन सुनिया कने इस भजने दी फरमाई शाह तक पहुंची हुए चरण दास जी दी कने सरैनी आले ने खनियारा ते तो जरूर तुहां सारे जो ये भजन पसंद आया होना है कने बड़ा ही बेहतर खास भजन जड़े से माँ चुमंडा दे उपर बने है कने तुहां सारे भी इस भजन जो जरूर ध्यान ने सुनिया होना है क्योंकि हर चीज़ दा अपना ही मतलब होंदा। ये भजन जड़ा ना से यहाँ जो बड़ा कुछ सिखाई करी जानते हैं ना पर निर्भर यहाँ पर करता है कि यहाँ किस तरीके ने कुछ सीख देने या क्या यहाँ सीख जड़े से लेंदे न सकारात्मक सोच दे जड़ा फायदे न लाभ हैं सभी तुह तक पहुँचाने न। वैसे तो मैं तुम्हें पहले भी दस्या था पर फिर ते एक बारी तुह तक पहुँचाई दी है कि तनाव च कमी सकारात्मक सोच अगर हाँ रख देन तो मुश्किल समय च शांत रहना कितना जरूरी है हाँ वास्ते तिस्ते यहाँ का जड़ा मानसिक स्वास्थ्य है से चिंता कने चिंता च भी कमी आँदी कने यहाँ का जड़ा मानसिक स्वास्थ्य सभी ठीक रहता कने हर कोई ये चाहता कि यहाँ का जड़ा स्वास्थ्य से हमेशा बेहतर रहे बेहतर स्वास्थ्य वास्ते जड़े से यहाँ दिल की सेहत जड़े से अच्छी रहती है क्योंकि जड़ा बीपी दे मरीज हैं अगर है ज़्यादा टेंशन लेंदे न ज़्यादा सोचते न तो कुछ ना कुछ तिना का जड़ा बीपी है से हाई हो जाता है तो ज़्यादा सोचना नहीं है बिल्कुल शांत रहना है कने सकारात्मक जड़ा विचार हैं से अपने अंदर रखने न कने अगर तुहां दे घरे च भी कोई अगर बीपी दा मरीज है तो जो लगता है कि ज़्यादा टेंशन दी वजह ने कई बार होंदा ना कि अगर हाँ ज़्यादा उस व्यक्ति जो ज़्यादा टेंशन देंदे न तो तिदी वजह ने भी कुछ ना कुछ सेहत जड़े से बिगड़ी आती है तो तुहां यह चीज़ का भी ख्याल रखना है क्योंकि अगर हाँ कुछ भी बोल दें तो बोलने से पहले 100 बारी जड़ा से सोचना है कि यहाँ क्या बोला देन क्या वहाँ दे बोलने ने अच्छा प्रभाव पड़ना है कि बुरा प्रभाव पड़ना है क्योंकि सोच विचार पर यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ किस तरीके ने अपनी जड़ा सोच है से रख देन हाँ भी तुह वास्ते बड़ी प्यारी प्यारी जड़ा सोच है से रख देन कने तुह तक जड़ा फरमाइशा न से जरूर तुह तक पहुँचाते न कने तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कने जुड़ सकते कने हाँ कने गलबात जड़े से जरूर करी सकते कने गलबात करते करते समय का जड़े से बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कालू दिया 2 बजते न कने कालू दिया 3 बजे आते न तशो तो समय जड़े से बड़ा ही कीमती है समय हर चीज़ अहाँ जो सिखाईद है कने हाँ भी समय के अनुसार थोड़ा दिया फिर ते अगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न क्योंकि तुह भी इंतज़ार पर बैठे होंगे कि कालू दिया 2 बजते न कने कालू दिया तुह सारे ही इस सफ़र कने जुड़ते न तो इस सफ़र जो इतों ही रोकते न गल्ला बातों का सफ़र गाने का सफ़र तो तुह तक पहुँचता रहना है कने इसी कने ये सफ़र जड़ा से तुह तक पहुँचा दे तो जरूर इंतज़ार करा क्योंकि इंतज़ार करना भी जरूरी है अगर हाँ इंतज़ार नहीं करते न तो कई बार हाँ कुछ जड़े से मिस करी देना तो जरूर है तो तक गीत फरमाइश पहुँचा देना।

तो श्रोताओं तो सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा रहे थे अपनी रेडियो तो शशि कन्ने। इसी कन्ने इस कार्यक्रम का जिहड़ा समय है से तुह तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक। तो तुह सारे जो ही पता है कि कार्यक्रम का जिहड़ा समय 2 से 3 बजे तक रहिंदा है। तो इसी कन्ने कार्यक्रम ते हुण अनुमति लैने का जिहड़ा समय है से जरूर आई है। तो समय के अनुसार चलना भी जरूरी है। तो इसी कन्ने तुह सारे अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनुमति कन्ने नवरात्रियां दियां तुहां जो फ्री ते ढेर सारी शुभकामनाएं हुण। हमेशा जिहड़ा भी तुहां दियां मनोकामना होन से पूर्ण होन। कन्ने श्रद्धा भाव ने तुहां नवरात्रि का ये पर्व जिहड़ा है से इंजॉय करा। कन्ने इसी कन्ने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गुनगुनांदे रहा।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल, शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने। ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है, पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी।
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा
8: काका, लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
15: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
16: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां, जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

शाला 91.2 MHz पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी। गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो पिंचन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल। शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने। ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: पंडित मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता का है कि? हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी।
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा
8: काका है, लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक में नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की।
15: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
16: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

92.2 MHz पर थे रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा और श्रोताओं हम आ तो सुगीत अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूर क्या हालचाल न तुंदे और क्या हालचाल न तुंदे ग्रां रे उम्मीद करना तो है भी ठीक और ग्रां भी बिल्कुल ठीक बुना श्रोताओं कार्यक्रम लेकर हासिल पहुंचेगा इंदी अपनी गप्पा त कार्यक्रम में श्रोतो आज गलबात करने असु कमल नहरिया रे बारे और यारे गीत असु इस कार्यक्रम में हुनने तैयार श्रोतो कार्यक्रम रा आगाज कर देने कमल नहरिया रे इस गीता होगी बड़ा खूबसूरत गीता लोबिया कमल नहरिया इस गीता अंदर बल्लू देन श्रोतो चंदने लगी हो सारी रात वो लोबिया गेरी फेरी पलंगा लाए हो हथे दिया घड़िया मत खोल दो बैरी लोके टाइम दिता ओ वैरिया तो टाइम हिंदा भी बचगा कार्यक्रम रा आगाज करने रहा इस गीता होगी आइया इस कार्यक्रम रा आगाज कर देन शो।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और एक कार्यक्रम इस समय चल रहा हिंदी अपनी गप्पा। एक कार्यक्रम सचिन कपूर सो की तो है बिल्कुल हुनु कर देने समय अपने अपने रेडियो सेट में श्रोता अया कार्यक्रम जो हगो बढ़न देन और अगला गीत हुन देन कमल नहरी रा लाडलिए तो केवल लुंदन कमल नहरी है इस गीत अंदर लाडलिए गीत अंदर आइए श्रोता हुन देन है सब भी कि लगूंगी फराटी और केवल देन इंदे अपने कमल नहरी जी हुन देन ये गीत।

0: जी कि कमल ने क्या दसु कर दिन लेकिन सही जाया नंद राल हुआ था वो ये रुंदा किन दे श्रोता तो नगर का सोई कुछ रहे ताबे तो है श्रोताओं कॉल जरूर कर सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते और अपनी क्षेत्र जानकारी साझा करने वास्ते क्योंकि कार्यक्रम लाइव हा और जुड़ी सकते हैं 7018817098 पर नंबर आक मौके फ्री तू हो गया हूँ शेयर करना हाँ 7018817098 पर तो है सब श्रोता असोगे जुड़ी सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की असो होनी सकते हैं। अच्छा वे दसा कि दुते पिछले गल तुआरा मौसम खराब थो तब तुआरा मौसम खराब थो तो जिन्या बहुत सारे श्रोता ही सोचो करते हूँ कि कहो मौसम खराब थो है ना इंदा दिन की सो खराब करी था और कई श्रोता के ना सो आनंद ले करते हूँ इनके वाकई में तुआरा मौसम खराब होता है पूरा दिन गया सो कुछ ना करो ना घूमना गया ना फिर ना गया ना कोई और ज़रूरी काम करो और केवल रेस्ट किया सो करे हा तो फिलहाल इन श्रोतागण आसो के कनेक्टेड हैं पुछ दिन गुण वालों दे नमस्ते जी। हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी नमस्ते कौन बोल रहे हैं और कड़ी थों बोल रहे हैं
1: शुक्र के बोल रही हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा और मैं जी ठीक ठाक राजीव बाजी
1: राजीव बाजी जी जेड़ा जन्ने के लिए यहाँ बोल रहा राजीव बाजी ठीक रब दे खा लेते
0: बिल्कुल बिल्कुल जी ता कौन देने गीत होना तो सू
1: गीत सुनवा ये नैल के रूप से छोड़ के ये समय से मन लाया।
0: हाँ जी हाँ जी
1: नैल के रूप से छोड़ के ये समय से मन लाया राधा राधा का ये रोल।
0: अच्छा राधा मुझे तुंदे गीता री समझ ना आई कि कौन देना दसो तो है अकमो के फेरे दस जी
1: समझ जे या भी राधा तू पगे बोलनी है राधा रुकमणि मेरी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है जी तो है स्टोरी की सो दसो करते हैं गीतरे गीतरे बोल। अच्छा ठीक ठीक है काना है गीतरे बोल इन तो हम भी कंफ्यूज करी तो चलिए कोई ना ठीक है ठीक है जी जरूर होना लेते सोए गीत धन्यवाद जी। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन हाँ तो है सभी ट्यून करो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा कहने सो चल रही हैं श्रोताओं ये फरमाइश के सो असू जरूर पूरे करने हैं जो फरमाइश इन्हें दसे है और इसी सोगी सोगी श्रोताओं इन्दे सुनील राणा जी रख नवा गीत किया सो निकलो श्रोताओं त आइया इस गीता का आनंद किया सो लंदन प्रथा गीतर अगेन सो टाइटल के सो दित रहा आइए फिलहाल इंजॉय कर दें कार्यक्रम मंच इस गीता जो बनी रही है तो सब आरजे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रही और गूंज सभी प्यारे प्यारे श्रोता रे

0: रहना। इससे पहले ये
1: Sale live now. What makes a hanger?

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगा हर्ट्स पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून के रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा गया ने सो बिल्कुल लाइव चल रही जनाब जरूर कनेक्ट हो सकते हैं 7018879 पर नंबर एक मुके फिर आऊँ शेयर करनो हाँ 7018879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल कर करे अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र जान कार्य किया सो साझा कर सकते हैं इन द्रोतागण अस हो गए कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन वालों दिन और कड़ी तो वालों दिन नमस्ते जी हेलो हाँ जी नमस्कार जी
1: नमस्ते जी नमस्ते और ठीक ठाक
0: बहुत बढ़िया जी
1: अच्छा जी हाँ ना खाने आ रहे थे बोल रहे
0: अच्छा जी क्या ना तुंदा वीडियो सेट रही आवाज आस्ते करे दिया
1: मेरा नाम तो गोमती है ना
0: हाँ जी
1: अपना बुढ़ी है बन गठड़ी
0: अच्छा
1: हाँ जी पहले भी यहाँ के साथ यहाँ गुड़ी गुड़ी के साथ ही जाओ ना
0: हाँ जी
1: और यहाँ वाले यहाँ बन मिलाने के गठड़ी को भी
0: अच्छा ठीक है जी धन्यवाद अच्छा तो इंसान की है ना सुबह के मैं बड़ा चुलबुलाहट वाला बंदा और ये हकीकत है ना अशोतों की रिटर्न टिकट की आसो इन दी कन्फर्म कि आसो वापस की आसो गाना ही गाना है ना हर किसी गाना और दुख ता बंदा कि कोई समय थो पहले चले गए छा ता दुख बंदा कोई सियाणा चलो जसेरे घर रगन दादा सी तो दुख बंदा बंदा ना त्यारे वास्ते सो कदी सियाणे ने बंदे कदी त्यारी उम्र पूरे ना बंदे लेकिन ये हकीकत है ना कि रिटर्न टिकट ता हाय हा तो शो तो ये चोड़ा के ये छड़ना तो पैना है एक दिन ताई तो हमेशा बलदा ना शो तो कि चलो जिंदगी में ना संघर्ष हर किसी भी लाइफ में अपना अपना संघर्ष है ना हर किसी भी लाइफ में कुछ क्या संघर्ष है कसकीरी बॉडी में दुख लग रहे हैं कसकीरी बॉडी में अंग ने है ना कसकीरी मतलब कोई पैसे जो लेकर ही परेशान आ कोई लोन जो लेकर ही परेशान आ कोई नौकरी जो लेकर ही परेशान आ कोई फैमिली था परेशान आ कोई क्या परेशान है अपने अपने लेवल री टेंशन आ के ना सो हर कसी हो ना लेकिन हम सब भी जो ये बोलना चाहन हुआ कि हेरा चंद लम्हे भी जिंदगी तब बुंदे आ और यह जिंदगी जो भी अगर है ये बिताई दिल है शो तो पटींद ही बिताई दिल है हंसद खेल देना बितल है सो करीन ताल जो इन द गद्दी का शब्द है कि कटरीन ताल ही करते रहे कटरीन दे रहे 24 घंटे और बस जल्दे रहे हैं सोचते वेले तो फिर क्या फायदा है जिंदगी रा भगवाना भी बोलना कि तुझो मनुष्य व जीवन दी तुरा तुम्हें ते क्या खट्टुआ सो मनुष्य जीवन में शो तो क्या बंदा कि यही बंदा ना कि कभी मनुष्य अंदर बुद्धि बंदे ना सो सोचे समझे सकता कि कभी किसी रह गया सो बुरा ना करना चाहता कभी किसी के बारे में बुरा ना बोलना कभी किसी की निंदा की आसो मत करा शो तो और अपने कम्मा तो मतलब रखा और खुश रहे जितना बुझ सकता छोटी छोटी खुशी तोपू करा शो तो छोटी छोटी चीज़ आके ना सो हंसने री तोपू करा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिंदगी बड़ी हसीन लगने अगर कुछ इस प्रकार रहा तो है करते हैं तो बहरहाल अब फरमाइश वाला दौर गया सो पूरा कर दिन बने रहे तो सब आर जैसा सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन रही।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.9 हदोई मेगाहर्ट्स पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा गैन सो बिल्कुल लाइव चल रही तुंदे वीडियो सेट मा ताइए श्रोतों कार्यक्रम जो हगो ब्रंदन और अन्य फरमाइश अगैन सो भी पूरी कर दें धीरे धीरे श्रोतों यह फरमाइश रा दौर के सो पूरा करू कर दे हिन और इसी सो की श्रोतों चलिए ठीक है जी आके हमेशा था यारी तारीफ करता रहता हा जाए सो रेडियो बोआ जाए अदर स्टेज बोआ कजो कि जो इंसान अपनी मेहनत थों अपनी लगन थों किया सो कम कराना शो थों सेरी तारीफ करने रे मान किया सो करता हा और ये फील्ड तय से अकीड़ी मतलब तो है सीखना चल लेता हूँ इंसान किया सो तुसो दाई गीते किया सो ना सीखनता हा हाँ बाकी मैं ये फील्ड ही कुछ ऐसी है सपोर्ट मनु रगे सो जरूर मिलता है प्यार मनु रगे सो जरूर मिलता है लेकिन करखना करके लगता क्या कलाकार दुए कलाकार जो किया सुखा जो ना सपोर्ट करूँ करता खैर ये विषय अलग है ये चिंतित विषय वैसे इस पर चर्चा है जरूर कर ले किसकी विशेषज्ञ होगी फिलहाल अमन कुर्रा नवा गीत किया श्रोताओं सो निकलो है और नवरात्रि रे उपलक्ष्य पर ये गीत किया सो कड्डू आ श्रोताओं बहुत ही सुंदर ये भजन है और योल बाजार में किया सो बहुत प्राचीन मंदिर आ रहा था कृष्ण जी रा श्रोतों तड़ी इस भजन रे किया सो शूटिंग भछूरे हा श्रोतों और पहली बार ही भछूरा के इस मंदिर में कसी ना कसी है किया सो कोई गीत गौ रहा अक भजन रे रूप में किया सो बनाऊ हा श्रोतों ना ले मना मेरिया संगत विच आया कर है ना मतलब मना मेरिया संगत विच आया कर अब बहुत प्यारा ये गीत गौरा अमन कौर है श्रोतों और इस वाक्य में इस गीत में किया सो अगर तो है मनचित लाग रही इस गीत जो हूँ लाई श्रोतों तो अक अग आत्मा जो किया इंदी रूह जो किया अक आत्मा जो किया श्रोतों सो संतुष्टि मोल दिया और प्यारा दे किया सो एनवायरमेंट किया सो बने गंदा हा श्रोतों और डायरेक्टर अमू राजपूत हिन और अमन कौर जी हिन बहरहाल बहुत मेहनती ए दोनों जिन्हें हिन श्रोतों बहुत ज़्यादा मेहनत किए सो करू करते हिन और इस फील्ड में चेंदे भैया मेहनत श्रोतों तो फिलहाल आइए जी कार्यक्रम जो हगु भड़ंदेन और धार्मिक भजन किया भगवान रा ना किया सो लेंदे हिन अमन कौर री

0: शोतम एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा है कार्यक्रम हिंदी अपने गप्पा कहना सो बाखूबी रेडियो सेट में चल रही हैं शोतम और कार्यक्रम में जो हगुन थोड़ा करी और रहा है ज़रूर बढ़ने हैं शोतम और बल्दे न कि जिंदगी माना शोतम वाकई में संघर्ष रहता ही रहता है। फिलहाल अमन कौर जी रहे प्यार दिया गीत तो शोतों जो है सब भी हैं हूँ और तो है ज़रूर YouTube में किसी करके अमन कौर लिखी सकते हैं, अमन कौर न्यू सॉन्ग या न्यू भजन कुछ इस प्रकार होगी लिखी सकते हैं और ज़रूर यहाँ रहे गीत जो कि सो लाइक दे सकते हैं और बिल्कुल प्यार कर सकते हैं यहाँ रहे गीत जो शोतों। तो इसी सो के श्रोतों कार्यक्रम जो है अभी थोड़ा करे हगूँ किया सो बढ़नते हैं और इन दे अगले श्रोता आंसू की कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: हेलो नमस्ते भैया।
0: हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते।
1: ओ ठीक ठाक है।

0: बहुत बढ़िया जी। तो है बल्ला तो है ठीक ठाक।
1: बढ़िया भाई ठीक घावट दुकान दे
0: अच्छा
1: इधर रेस्ट भी वर्क का दिया आज लग रहा बढ़ना।
0: हाँ ये था पूरे दिन मौसम की ऐसा कुछ खराब खराब ही रहे थो ना। हाँ जी तो ये आज तो ठीक ठाक ही धूप देते फिरे।
1: आज का खाई दुख लग रही है
0: अबे ये मौसम था ना कि जो एकदम अबे ऐसा पखे लाए लेने ना है ना तो
1: जी।
0: ये मौसम जो सु खराब ऐसा अबे बीमार करना है इस मौसम।
1: जी क्या
0: जी
1: करना पड़े मौसम से चेक किया
0: बिल्कुल। हाँ जी कुंडने की तो
1: गीत
0: हुंडा पसंद कर ले समय रहा थोड़ा करे अभाव आ अच्छा
1: भाई भजन बना दे माता नवरात्रे लगू ना दादी माता का भजन बना दे
0: दादी माता रे भजन
1: आओ ठीक
0: चलिए ठीक है जी जरूर होने ले।
1: है भाई ठीक है धन्यवाद
0: धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद। श्रोतो एफ एम बैंड 91 शमला पर तो मेगा हिट्स पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के ना सो चल रही हिन ताइए कार्यक्रम में थोड़े करे हगुम बढ़ दे हिन श्रोतो हगु बढ़न दिन कार्यक्रम जो और लेके चल दे तू सभी श्रोता जो। हाँ श्रोता जो लेके रही चल दे हिन अबे श्रोतो इस गीतारी किनारी कजो के तुहे सब बन रहे ने इस समय आर जे सचिन कपूर सोगी और हिंदी गप्पा हुनु करते हैं। चलिए फिलहाल लेके चल दे इस गीतारी किनारी।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून के रॉ कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा गेंद सो चल रही थी शोधो अब वक्त हो चुके तो सभी तो अलविदा लेने रहा फिर मूल दिन छिया था वहाँ गुड इवनिंग धर्मशाला में तीन तक इंजॉय करा रेडी गुंजन धर्मशाला जो और गंदे गंदे दादी माता रा भजन तुसु होने गंदे नमस्ते धर्मशाला।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल। शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने। ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: पंडित मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी।
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा चल,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
15: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
16: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं आते।

0: दोस्तों आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना नो शेयरिंग?
2: मामा
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: चल भाई अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल मैं बात करता हूँ।
7: जीजा तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

श्रोता एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन की। इसी गूंज के साथ यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज पर।

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल, नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी, आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

मैं सचिन कपूर हूं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को इस समय आप सभी के वीडियो सेट पर होस्ट कर रहा हूं। ये सिलसिला ये गीतों का पिटारा ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुनाते हैं इसी बीच एक और प्यारा सा गीत।

गीतों की माला यूं ही पिरोते रहिए, गीतों की माला यूं ही संजोते रहिए। हम आपके साथ हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला में, और धर्मशाला से बिल्कुल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला में। यूं ही बने रहिएगा आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, और कार्यक्रम में गीतों का आनंद यूं ही लेते रहिएगा। कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल, शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने। ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: पड़ी मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी,
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है, काका है लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेनदेन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला पर सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ सचिन कपूर, आपका अपना आरजे रेडियो दोस्त। बहुत बहुत तो स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और खुश होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए जी, कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम धर्मशाला का मौसम जो है श्रोतों वो जान लेते हैं कि इस समय धर्मशाला का मौसम क्या बतला रहा है। हालांकि आज जो है वो मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है श्रोतों। पिछले कल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन आज जो है श्रोतों वो काफ़ी धूप जो है वो खिली हुई थी। तो इस समय की बात करें तो लगभग 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान है श्रोतों। नमी की बात की जाए तो नमी इस समय जो है वो 66% है और विजिबिलिटी जो है श्रोतों वो 16 किलोमीटर तक है। तो ये है धर्मशाला का इस वक्त का मौसम जो हमने आप तक साझा किया। तो कार्यक्रम में बहुत सी जानकारियां हैं जो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे श्रोतों, खास साथ ही साथ बिल्कुल आज का विचार जो है वो भी आप तक हम ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन आइए जी, आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस गीत के साथ। बने रहिए, जुड़े रहिए आरजे सचिन कपूर के साथ, गूंज अपने पन की।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो इंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आरजे सचिन कपूर। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को आज के विचार की ओर। जी बिल्कुल, दुनिया बदलने के बारे में सब सोचते हैं कि जनाब दुनिया बदलने के बारे में जो है वो सब सोचते हैं, पर कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता है। देखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार जारी रहने वाली यात्रा है। सोच को इतना बड़ा रखो कि हर चुनौती जो है वो छोटी लगे। श्रोतम, तो ये कुछ आज के विचार थे श्रोतम जो हमने आप से साझा किए हैं और वाकई में ना हम अक्सर चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, सरकार को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए या अन्य कुछ भी और चीज़ें आप ले लीजिए, आप हमेशा यही सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो। हम अक्सर दूसरों पर जो है वो ब्लेम करते हैं, दूसरों के ऊपर जो है वो उंगली उठाते हैं। याद रखिए श्रोतों, जब भी हम दूसरों के ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं ना, तो बाकी की तीन उंगलियां जो हैं, बाकी की तीन या चार उंगलियां जो हैं वो हमारी साइड ज़रूर होती हैं, है ना। तो किसी पर उंगली ना उठाएं, अपना कार्य जो है वो शिद्दत के साथ करते रहिए और हमेशा अच्छा करने की जो है वो ज़रूर सोचिए श्रोतों, क्योंकि साथ केवल और केवल कर्म जो हैं वो जाते हैं। तो चलिए, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलते हैं अब आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

वाकई मैं नशत हूँ कि कितना मुश्किल होता होगा ना वो दौर जब अपनी बेटी को खुद से जुदा करते हैं, अपने घर की लक्ष्मी को जो है वो खुद से जुदा करते हैं। कितना बड़ा दिल है उस बाप का जो अपनी बेटी को आपकी घर की बहू बनाता है। वाकई में ही ये जो मोमेंट है ना, ये मोमेंट मुझे लगता है बहुत ख़तरनाक होता होगा, बहुत ज़्यादा रुलाने वाला होता होगा। और क्या खूब गाया है कुमार शानू जी ने और अलका याग्निक ने। वाकई में ही बाबुल का घर, वाकई में ही चलिए जो तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। और वाकई में बहुत मुश्किल सा ये दौर रहता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुओं की इज्जत जो है वो ज़रूर कीजिएगा, है ना जी। जो भी बहुएं आती हैं, जितनी भी बहुएं आती हैं हमारे घर में, तुम्हारे घर में, हर किसी के घर में, तो उनकी इज्जत जो है वो ज़रूर कीजिए। क्योंकि एक बाप ने जो है वो बड़े प्यार से जो है वो अपनी बेटी को पाला है, बड़े ही नाज और प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर जो है वो बड़ा किया है। अपनी ख्वाहिशें मार कर जो है वो बाप अपनी बेटी को हर एक चीज़ जो है वो ला कर देता है। सो तो ये हकीकत है, ये वाकई में ही हकीकत है। बेशक उसका

तो अभी इस समय जो है वो ऑफिस से अपने घर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। याद कीजिए ना कि वो स्कूल की घंटी जब इंटरवेल होती थी, जब छुट्टी हो जाती थी, वो दोस्त बहुत याद आते हैं, वो दोस्त का साथ बहुत याद आता है, वो बचपन की यादें बहुत याद आती हैं, वो खट्टी मीठी बातें बहुत याद आती हैं। ना दुनिया की फिक्र थी ना तो कोई गम था, ना दुनिया की फिक्र थी ना तो कोई गम था, काश फिर से स्कूल के वो दिन जी पाते हम लोग, है ना। क्योंकि ना तब दुनिया की कोई फिक्र थी और ना ही कोई गम था, ना ही कोई टेंशन परेशानियाँ और ना ही ये सब झंझट था। जिस परेशानियों से, जिस झंझट से हो सकता है हम सभी जो है वो गुजर रहे हैं। देखिए, अक्सर मैं कहता हूँ कि अपनी अपनी लाइफ की दिक्कतें, अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर किसी के पास हैं, है ना। तो चलिए जी, सुबह की वो भाग दौड़ बहुत मीठी लगती थी तब, आज की भाग दौड़ सोचिए, और वो भाग दौड़ सोचिए जब आप मम्मी की डांट सुनते थे और स्कूल जाते थे, उठने के लिए डांट सुनते थे, लेट होने के लिए डांट सुनते थे, खाना खाने के लिए डांट सुनते थे श्रोताओं। ये सारी बातें आज हम ज़रूर करेंगे 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। आइए तब तक एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को।

यह है आप सभी का अपना 91.2 मेगाहर्ट्ज पे आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम सचिन कपूर के साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक जानकारियों के साथ भी जो है श्रोतों वो आपको अब रूबरू करवाते हैं। खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी 9.3 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि। श्रोतों राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 20वीं एशियाई खेल में पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर माह में सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो किया जाएगा। श्रोतों प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में जो है वो संपन्न हुई एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी टीम की खिलाड़ी रितु नेगी, पुष्प राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 1-1 करोड़ रुपया की करोड़ रुपए की जो है वो पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पुरुष मैराथन में रजत पदक विजेता सावन बरवाल को 2 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया और एथलेटिक्स में दम रखने वाले 10,000 मीटर दौड़ लगाने वाले जी बिल्कुल उन विजेता को जो है सीमा कुमारी को जो है वो 1.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। श्रोतों क्रिकेट की स्वर्ण पदक विजेता टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को भी जो है वो सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि जो है श्रोताओं वो प्रदान की जाएगी। आप सभी बने हुए इस समय FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को इस खूबसूरत से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही।

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानकारियों का पिटारा भी यूं ही खुलता रहेगा। साथ ही साथ श्रोतो, जो आज का हमारा टॉपिक है स्कूल के दिन, है ना, वो स्कूल गोइंग डेज, उस और भी थोड़ा सा जो है वो हम ध्यान देते हैं। श्रोतों कहते हैं ना, वो किस किस को याद है श्रोतों की सुबह मम्मी की डांट सुनकर उठना, है ना, भारी बैग उठाना, बस या वैन के लिए जो है वो भागना, और असेंबली में आंखें बंद करके खड़े रहना और चुपके चुपके से अपने दोस्तों को देखना, चुपके चुपके से दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को जो है वो देखना कि वो क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, ये किस किस को याद है। क्लासरूम की यादें हमें बहुत याद आती हैं श्रोतों, वो लास्ट बेंच पर बैठना, है ना, और बैठने की जगह ढूँढना टीचर के आने से पहले जो एक शोर होता है श्रोतों, वो बहुत प्यारा लगता था उस समय हमें, है ना, टीचर के आने से पहले होने वाला शोर और मॉनिटर का वो चुप करवाना हम सभी को, और मॉनिटर का वो ब्लैकबोर्ड पर नाम लिख देना कि ये बच्चा शरारती है, इस बच्चे ने शोर किया था, इस बच्चे ने ये किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, ये किस किस को याद है। होप सो हम सभी को ये सारी बातें जो है वो याद हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार फिर से मैं आपको उसी दुनिया में जो है वो लेकर चलूँ, क्योंकि आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में श्रोताओं हम ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भूल चुके हैं। चौक होती थी ना श्रोताओं, वाइट चौक, उस पर वो लेकर अपने डेस्क पर जो है वो मोटे मोटे अक्षरों पे मोटे मोटे अक्षरों से जो है वो अपना नाम लिखना अपने बेंच पर, है ना, ये किस किस को याद है। होप सो आप सभी को जो है वो ज़रूर याद होगा, क्योंकि सच्ची दोस्ती जो है वो स्कूल में होती थी श्रोतों, है ना, लंच ब्रेक में यानी कि टिफ़िन टाइम में जो है वो हम मिलते थे, खेल कूद बहुत याद आता है, इवन कि जो गलती करते थे उसकी सज़ा भी जो है वो बहुत याद आती थी श्रोतों। सारी बातें हम ज़रूर करेंगे, इन यादों को आज हम ज़रूर समेटेंगे श्रोतों, कोशिश हम ज़रूर ऐसी करेंगे। बहरहाल आप सभी को लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

0: अब
1: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए श्रोतो उन कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे हैं श्रोतो आज पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मुझे तो आ रही हैं श्रोतों वो पुरानी यादें, साथ ही साथ जानकारियां जो हैं वो भी आ रही हैं। तो जानकारियां भी जो हैं वो भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाने का जो है वो प्रयास रहेगा श्रोतों। श्रोतों अच्छा वो पीटी का पीरियड किसको याद है, किसको इंतज़ार रहता था पीटी के उस पीरियड का? ग्राउंड में दौड़ना है ना, होमवर्क ना करना, क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना, और ये तो कुछ अलग ही मजा था श्रोतों। जब पूरे कॉरिडोर में जो है वो सिर्फ हम और हमारे वो चार दोस्त जो है वो हाथ ऊपर करके हैंड्स अप होकर जो है वो खड़े हो जाते थे, वो कुछ अलग ही मज़ा था। वो उस सजा का मज़ा ही कुछ अलग था श्रोतों। आजकल उस सजा के लिए जो है वो तरस जाते हैं श्रोतों, है ना, और वो दोस्त भी कहाँ मिलते हैं श्रोतों। अब आपको नहीं लगता श्रोतों कि अब ज़माना कुछ अजीब ही रंग जो है वो दिखा रहा है, ज़माना कुछ अजीब ही रंग जो है वो बतला रहा है ना? होमवर्क ना करने पर क्लास से बाहर जब निकालते थे ना, वो मज़ा आता था श्रोतों। लेकिन वो अब मज़ा आ रहा है, लेकिन अभी जितने बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें जो है वो ना करें। हाँ, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक जो है वो ज़रूर हो जाता है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि होमवर्क पूरा करें, क्लासरूम में आराम से बैठें, और जितना हो सकता है उतना पढ़ाई ज़रूर करें। क्योंकि श्रोतों ये मेरा मैं बताना चाहता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि विदाउट स्टडी आप कुछ भी नहीं हैं, बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं हैं, और अगर आप पढ़ते नहीं हैं श्रोतों तो फिर मुश्किल रहती है जीवन में। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है श्रोतों, है ना। और ये भी याद है तुम्हें जब हमारी जो पूरे स्कूल में एक ख़तरनाक टीचर या एक या दो पीरियड जो है श्रोताओं वो ऐसे होते थे जिन टीचरों से हमें बहुत डर लगता था, और जिस दिन वो स्कूल नहीं आते थे तो स्कूल में दिन बन जाता था, है ना। ये वाकई में मुझे याद आ रही हैं चीज़ें, और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कुछ टीचर्स जो हैं श्रोतों वो बहुत सख्त होते थे, है ना, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था श्रोतों, और कुछ हमारे फेवरेट होते थे। आज समझ आता है श्रोतों कि इनकी वो डांट और सज़ा हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए थी। तो अगर आपको आज भी आपके वो टीचर आपके साथ हैं जो आपको डांटते थे, जो आपको सज़ा देते थे, तो उनको याद ज़रूर करें, उनको मैसेज जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि वो हमें एक अच्छा इंसान, एक बेहतरीन इंसान, एक समझदारी वाला इंसान, एक सूझबूझ वाला इंसान बनाने के लिए जो है वो करते थे, वो प्रयास करते थे श्रोतों। उन्होंने हमें सिर्फ किताबों का पाठ नहीं पढ़ाया बल्कि जीवन की मुश्किलों से लड़ना भी। चलिए कुछ एक चीज़ें तो हम खुद सीख जाते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो हैं वो टीचर्स भी हमें सिखाते हैं ज़िंदगी की राह में, कि आगे जाके ज़िंदगी जो है वो थोड़ी कठिन होने वाली है।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब आप सभी को लेके चलते हैं श्रोतो इन प्यारी यादों के पास, उन प्यारी यादों के पास जिनसे हम आपको रूबरू करवाने में शायद थोड़े से सक्षम जो है वो हो रहे हैं, कोशिश जो है वो ज़रूर है हमारे श्रोतों। बहरहाल कार्यक्रम को फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं श्रोतों और देखिए फिज़िकली एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये मेरा ध्यान एकदम से गया क्योंकि आजकल आपने ये देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कोरोना वायरस के जो इंजेक्शन हम सभी को 3 डोज़े जो लगी हैं वो डोज़ के बाद हार्ट अटैक के मामले जो हैं अब वो ज़्यादा बढ़ गए हैं श्रोतों। तो फिज़िकली फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, वॉकिंग जो है वो ज़रूरी है बहुत श्रोतों। देखिए वॉकिंग का सबसे आसान और कम इम्पैक्ट वाली फिज़िकल एक्टिविटी में गिना जाता है। जी बिल्कुल श्रोतों, और फिटनेस के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है वॉकिंग श्रोतों। लेकिन सवाल ये है कि क्या बहुत ज़्यादा वॉकिंग घुटनों पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डाल सकती है? इसका जवाब केवल ज़्यादा चलना नुकसानदायक है या जितना चलें उतना अच्छा नहीं है। वॉकिंग का असर व्यक्ति की उम्र, बॉडी वेट, घुटनों की मौजूदा समस्या, वॉकिंग की जगह, जूते और अचानक बढ़ाई गई एक्टिविटी पर निर्भर कर सकता है। क्या रोज़ाना ज़्यादा वॉकिंग करने से घुटनों को नुकसान पहुंच सकता है श्रोतों? आमतौर पर सिर्फ वॉकिंग करने पर घुटनों के नुकसान का कारण नहीं माना जाता है, लेकिन ज़्यादा चलते समय घुटने का अत्यधिक उपयोग करने से जोड़ों पर जो है वो भार पड़ता है श्रोतों, है ना। और कार्यक्रम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और लेके चलेंगे आप सभी को वॉकिंग और घुटनों के बीच कनेक्शन में। देखिए वॉकिंग के दौरान जो है वो घुटना शरीर के वजन को संभालता है और हर कदम पर जोड़ों के अंदर जो है वो ताकत पैदा होती है श्रोतों। एक स्टडी में जो है वो कहा गया है श्रोतों कि एक्टिविटी करनी चाहिए और एक्टिविटी के दौरान जो है वो जोड़ों के दबाव को मापा गया है। इसमें लेवल वॉकिंग के दौरान अधिकतम परिणाम बल औसतन बॉडी वेट के लगभग 261 तक पहुंची। सीढ़ियां चढ़ना और उतरने में लोडिंग इसमें भी ज़्यादा थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कदम घुटने को नुकसान पहुंचाता है, शरीर हर कदम जो है वो घुटनों को नुकसान पहुँचाता है ना। ये तो अपने अपने शरीर पर जो है वो कहीं ना कहीं डिज़र्व करती हैं श्रोताओं चीज़ें। तो कार्यक्रम में हम सभी बने हुए हैं रेडी गुंजन धर्मशाला के साथ और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि वॉकिंग जो है वो वाकई में बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली फ़िट रहना इंसान को जो है वो बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो फिर सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगती हैं, आसान लगती हैं, बेहतरीन लगती हैं, फ़ायदेमंद लगती हैं और सुपर लगती हैं। लेकिन अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, चीज़ें आसान नहीं लगती हैं। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को प्यारे प्यारे से गीतों की ओर जो है वो आप सभी श्रोताओं को हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी श्रोता जो है वो रूबरू हो जाए और कोशिश तो हमारी यही है। चलिए सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया और अब वक्त हो चुका है श्रोतो वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का। कुछ ही देर में जो है श्रोताओं वो समाचार रिले किए जाएंगे। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना वेडियो गुंजन। तो चलिए श्रोताओं कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब होप सो आप सभी जो है वो जानकारियों के साथ रूबरू हो रहे होंगे और हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माफ़ कीजिए इस समय अब समय हो चुका है समाचारों का।
1: आर्थिक और व्यापार समझौते का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के महत्व पर बल दिया। शीर्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन किसी भी कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था को और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के और संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को केवल आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विपक्षी प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात के दौरान भी श्री राहुल गांधी कोई सबूत पेश नहीं कर सके। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBT मैदान शामिल हैं। इसके साथ ही
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।
0: श्रोतों ये है आप सभी का अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी RJ सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो कोशिश की जा रही है अपने श्रोताओं को प्यारे प्यारे से गीतों से रूबरू करवाने की और साथ ही साथ उन हसीन लम्हों को याद दिलाने की। चलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो होप सो हमारी भी हार जो है वो ना हो। तो एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो।

श्रोतम, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। हमें थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, ये वाकई में श्रोतम, हाँ ये जो प्यार है ना, ये वाकई में ही बहुत प्यारा होता है अगर हो जाए तो। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं श्रोतों। देखिए, पर उस समय जो है ना वो परीक्षा का डर बहुत रहता था, लेकिन आज जो ज़िंदगी का डर है ना वो काफ़ी गंभीर है श्रोतों। लेकिन उस समय परीक्षा का डर जो है वो काफ़ी अत्यधिक रहता था। परीक्षा के दिनों में रात रात भर जगना, दोस्तों से पूछना कि तेरा कितना सिलेबस हो गया है, तुझे कितना आता है, कितने ट्रू फॉल्स तुझे आते हैं, कितने फिलिंग द ब्लैंक्स तुझे आते हैं, कितना तू पढ़ लिखा है, कितना तू सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, कितने तू चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुका है, और एग्ज़ाम हॉल में एक दूसरे को इशारों से आंसर समझाना, ट्रू दो उंगलियाँ करके, फॉल्स एक उंगली करके, है ना। ये प्लानिंग जो है ये एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही हो जाती थी कि अगर मैंने दो उंगलियां की तो मतलब कि ट्रू है और एक की तो फॉल्स है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स के जो वो ऑप्शन आते थे तो वो उन ऑप्शनों को जो है वो उंगलियों से समझाना, एक दो तीन किस नंबर पे है, पहले का आंसर तीसरे नंबर पर है, ये बहुत याद आता है। तो जब हम स्कूल के आखिरी साल में होते हैं तो हर कोई कॉलेज जाने के लिए उत्सुक होता है, लेकिन विदाई के दिन फेयरवेल जब होती है श्रोतों, जब यूनिफॉर्म पर सब दोस्त ऑटोग्राफ लिखते हैं, तब रोना आ जाता है। उस दिन एहसास होता है कि बचपन कहीं ना कहीं तो ख़त्म होते नज़र आ रहा है। एक बार याद कीजिए ना श्रोतों, एक बार उस ओर चलिए ना श्रोतों, एक बार उस उन यादों की ओर चलिए ना, उन यादों को एक बार जो है वो समेटने की कोशिश कीजिए ना। वो यादें कहाँ अब समेटी जाती हैं, वो यादें केवल यादें बनकर रह जाती हैं श्रोतों, केवल यादें बनकर रह जाती हैं। वाकई में ही हम कभी नहीं भूल पाएंगे वो स्कूल के दिन, हम कभी नहीं भूल पाएंगे वो टीचर का डर, हम कभी नहीं भूल पाएंगे वो अपनी गलतियों का एहसास करना, बाहर कॉरिडोर में हैंड्सअप करके खड़े होना, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके खड़े होना, ये चीज़ें हम कभी नहीं भूल पाएंगे श्रोताओं, और ना ही शायद अब हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें कभी लौट कर भी आएंगी, कभी नहीं आएंगी श्रोतों। चलिए, इसी का नाम ज़िंदगी है, आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है श्रोतों, आगे बढ़ते रहना है और यादों को ताज़े जो है वो करते रहना है, कुछ हमारे साथ और कुछ आप अपने साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम को, और कार्यक्रम में एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो।

श्रोतो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त आप सभी RJ सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं अपने अपने वीडियो सेट पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। तो चलिए जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो यादें हम दिला सके श्रोतों, और दिलाने की कोशिश

दिन चले गए लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। कागज़ की किश्ती थी, पानी का किनारा था। कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था। खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था। कहाँ आ गए हम इस समझदारी के दलदल में कि जनाब कहाँ आ गए हम इस समझदारी के दलदल में। वो नादान बचपन ही कितना प्यारा था, वो नादान बचपन ही, वो नादान बचपन ही, वो नादान बचपन ही कितना प्यारा था, कितना मासूम था। श्रोतों, स्टेज पर जब हड़बड़ी होती थी श्रोतों, हर वाक्य के बाद थोड़ा रुकना, थोड़ा पोज लेना, धीमी गति से बोलना, क्या तुम्हें वो याद है। जैसे जैसे अभी मैं रुका कुछ याद है श्रोतों, वो लास्ट बेंच की बात, वो अपनापन, अपने स्कूल की कोई वास्तविक या छोटी सी घटना आपको याद है श्रोतों? ज़रूर होगी ना, हर किसी को होती है। हर किसी के पास जो है ये यादें हैं, हर कोई इन यादों को जो है वो समेट कर बैठा है। आज इस नाचीज़ ने, इस आरजे सचिन कपूर ने कोशिश की है कि आपको उन यादों के साथ रूबरू करवा सकूं, थोड़ा सा मिला सकूं, थोड़ा सा याद दिला सकूं कि हमने भी वो दौर जिया है, कि हमने भी वो दौर जो है वो मस्त मलंग होकर जिया है। श्रोतों, बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से

श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। श्रोतो गुड इवनिंग धर्मशाला। तो होप सो आप सभी को मैंने कोशिश तो श्रोताओं ज़रूर की थी कि आप सभी को मैं जो है अब वो स्कूल की कुछ बातों से रूबरू करवा सकूं, क्योंकि हम अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भूल चुके थे श्रोताओं। तो कोशिश तो मैंने की है कि आप सभी श्रोताओं को जो है वो ज़रूर रूबरू करवा सकूं श्रोताओं। और ज़िंदगी वाकई में ना ज़िंदगी में आज महंगे फ़ोन हमारे पास ज़रूर हैं, महंगी गाड़ियां हमारे पास ज़रूर हैं, महंगे घर हमारे पास ज़रूर हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है, वो 5 रुपए वाली खुशी नहीं है, वो 5 रुपए वाली हंसी नहीं है, वो बहुत चीज़ें हम मिस कर चुके हैं श्रोताओं, बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें इवन कि हम मिस कर चुके हैं। तो चलिए जी, ज़िंदगी का दस्तूर है कि आगे बढ़ते रहना है, है ना, ज़िंदगी का दस्तूर है आगे बढ़ते रहना है श्रोताओं। तो चलिए फ़िलहाल कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि आज हमने बचपन की बात की है, स्कूल की बात की है, तो ये गीत तो इस बीच बनता ही बनता है श्रोताओं। आप सभी के

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए श्रोतो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त हो गया है रेडियो गुंजन धर्मशाला में। श्रोतो वाकई में ही वक्त हो चुका है अब एक छोटे से अंतराल का, लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को अंतराल की ओर।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी नी, सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल। शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने। ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी,
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक

0: तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
2: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
5: क्यों, क्या हुआ?
2: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
5: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
6: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

0: शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ अनाची सचिन कपूर। शोतो 7:45 हो चुके हैं और अब वक्त हो चुका है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचार सुनने का, तो यूं ही बने रहिएगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कुछ एक खास अपडेट्स के साथ आपको रूबरू करवाते हैं।
1: राज्यपाल ने नौणी विश्वविद्यालय में युवाओं के विकास के लिए 100 दिवसीय रोड मैप का किया शुभारंभ। आपातकालीन सेवा 100 फिर करवट लेगा मौसम, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ।

0: संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सहयोग कर रही है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के केलंग में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के देश के पहले उच्च पर्वतीय आयुर्विज्ञान व जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करने के अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि लाहौल स्पीति की भौगोलिक परिस्थितियाँ देश के दूसरे क्षेत्रों से अलग हैं। उन्होंने कहा कि कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड, बदलती जलवायु और अनूठी जनजातीय जीवन शैली को देखते हुए इस केंद्र की स्थापना एक दूरगामी और क्रांतिकारी कदम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र जनजातीय समुदायों और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के लिए दीर्घकालिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा।
1: यहाँ के इलाके की यूनिक चैलेंजेस एक अपने आप में अनूठी विषमता है जिसको जानना स्टडी करना बहुत ही आवश्यक, और इसके साथ साथ यहाँ के मौसम का और यहाँ के जो दूर दराज इलाके हैं और इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान प्रहरी जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मद्रास यानी तमिलनाडु, केरल, वहाँ के समतल इलाके के लोग जो यहाँ -20 में आकर के देश की सेवा करते हैं, उसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है यह जानने की बहुत आवश्यकता होती है। यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं और यहाँ जो आकर के सर्विस करते हैं उनके जीवन को में किस तरीके से उत्तम स्वास्थ्य दिया जा सके, इसकी चिंता करने के लिए आज ये रिसर्च सेंटर जो बना है उसके लिए मैं विशेष करके आप सबको बधाई देता हूँ।
0: जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2018 में नई स्वास्थ्य नीति लाई जिसका उद्देश्य बीमारी होने से पहले उसे रोकना है।
1: जिस नीति में हमने कहा कि बीमार पड़ो ही क्यों, पहले तो बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। ये रिसर्च सेंटर इसलिए बन रहा है कि मौसम का इंपैक्ट -20 का क्या असर पड़ता है ये हमें पता चलता है, होने वाली तकलीफों को हम सुझाव दे सके और यहाँ के लोगों को सदा सदा
0: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1947 के विजन अवसरों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं नीम कोटेड यूरिया 2015 के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल से किसानों को सीधा लाभ मिला है और बिचौलियों की भूमिका पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग से फसलों की
2: सरकार ने पहला काम ये किया कि यूरिया की 100% नीम कोटिंग कर इसलिए यूरिया की काला बाजारी रुक गई। केमिकल की फैक्ट्री में जो यूरिया खरीदा जाता था, अगर हमें उपज बढ़ानी है

0: शिमला और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
1: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
2: हाँ, ये पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
1: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा को भी हो सकता है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
3: दर्द या बैठी नाक को नजरअंदाज ना करें, हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढके। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें।

श्रोतों FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस फेरे से गीत की ओर।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे थे। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोतो अब मुझे यानी सचिन कपूर को आप दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो गुंजन में आरजे सचिन कपूर को यूँ ही सुनते रहिए, सुनाते रहिए। और फेसबुक के माध्यम से भी हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं श्रोतो आप तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की। तो बिल्कुल मेरा फेसबुक अकाउंट है सचिन कपूर के नाम से, ज़रूर आप वहाँ पर भी जो है गदियाली व्हील्स ज़रूर देख सकते हैं। बहरहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त, माँ बाप की सेवा हमेशा करें।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी नी सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल, शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने। ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: पनी मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम।
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना हम आपसे नहीं चाहिए दहेज, काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी।
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा
8: चल, लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं बस दूर जाना चाहता है, और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
2: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
3: मामा, नो शेयरिंग।
2: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
3: कौन था?
2: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
3: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
2: स्मार्ट गर्ल।
3: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
2: याद है ना, नो शेयरिंग।
3: मामा,
4: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
5: नाकामियां, जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
6: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
7: क्यों, क्या हुआ?
6: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
7: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
8: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
9: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
8: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
9: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल, शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने। ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता का है, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये का है? ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है? पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाएं, पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी,
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा चल,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ की नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
7: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
15: वही असली तरक्की।
7: एक कदम स्वच्छता की ओर।
16: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना, वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं आते।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
2: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
5: क्यों, क्या हुआ?
2: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
5: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
6: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
7: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
6: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया।
7: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

नहीं दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी, हाथ में माला और कमंडल, शिवजी के लिए 1000 साल तपस्या की थी इन्होंने। ये देती हैं धैर्य और सफलता।

0: पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला?
1: कार्तिक कृष्ण नवमी 11 नवंबर को।
0: कर लेंगे तब तक सारा इंतजाम,
2: आप चिंता ना करें।
0: चिंता काहे की, हमें पूरा भरोसा है आप हमारा बेइज्जती नहीं होने देंगे। पर दूल्हे राजा का इज्जत कैसे कर रहे हैं, वो तो दिखाइए। ये तो खोटा सिक्का है।
2: और ये का है, पढ़ लिख के भी दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? जिंदगी में अपने बलबूते पर चलने की क्षमता नहीं है इनमें? ये खोटा सिक्का नहीं है का?
3: नहीं है हम खोटा सिक्का। बाबूजी बोले थे ना, हम आपसे नहीं चाहिए दहेज। काहे नहीं सुनते आप हमारी?
4: तुम क्या खड़ा हो?
3: बाबूजी दहेज नहीं, हमें नहीं चाहिए।
5: ले जाए पक्का?
3: एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
6: जो दहेज लेते हैं वो खोटे सिक्के ही तो हैं, और खोटा सिक्का नहीं चलेगा।
7: दहेज मुक्त बिहार, संकल्प हमारा।
8: शालू
9: माने ना तो करवा ले।
8: काकी लड्डू खाओ, नौकरी लगी मेरी।
9: अरे वाह, नौकरी लग गई
8: जी,
9: ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा।
8: अरे काका भी है।
9: अच्छा,
8: काका लड्डू खाओ।
10: अरे बेटा मुबारक हो, कहाँ लगी नौकरी?
8: बैंक में काका।
11: मुझे तो पहले ही पता था तुम बहुत आगे तक जाओगे।
12: अरे भाई विक्की, तू तो बड़ा आदमी हो गया यार।
11: भूल तो नहीं जाओगे हमें?
8: अरे आपको कैसे भूलेंगे, लड्डू खाओ।
13: बैंक नहीं, नौकरी तो रेलवे में लगनी चाहिए थी।
12: क्यों भाई?
13: इन्हें पटरी पे बैठना पसंद है ना।
12: अरे कुछ भी कहता रहता है ये लड़का। अरे रुक, कहाँ भाग रहे? अरे
14: बेटा अब टॉयलेट बनवा ही लो।
8: जी।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ नौकरी नहीं है जानी, शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: कभी किसी को इतना मत परखो कि वो सच में तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जो बार बार समझाता है ना, वो कमजोर नहीं होता, बस रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन जब वही इंसान एक दिन चुप हो जाए ना, तो समझ जाना उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अब वो समझाना नहीं, बस दूर जाना चाहता है। और फिर उसकी कमी तुम्हें जरूर महसूस होगी, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
2: मामा, नो शेयरिंग।
1: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
2: कौन था?
1: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
2: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
1: स्मार्ट गर्ल।
2: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
2: मामा,
3: डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ।
4: नाकामियां जिन्हें हम बचपन में समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है आज जो हो रहा है वही पूरी जिंदगी होगा। कई बार साथियों की हंसी को भुलाने के लिए गलत चुनने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो नाकामियों से झुके बगैर अपने साहस से उनका सामना करते हैं, वही आगे जिंदगी के असली विजेता होते हैं। हमें गर्व है ऐसे साहसी बच्चों और अध्यापकों पर। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।
5: चल भाई, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: तेरे जीजा जी ने मेरा दिल तोड़ दिया।
6: अरे उनकी इतनी हिम्मत, तू चल, मैं बात करता हूँ।
7: जीजा, तुमने क्या करा ऐसा कि मेरी बहन घर छोड़ के जा रही है?
8: वो इसने मेरे को किसी लड़की के साथ बाइक पे जाते देख लिया था।
7: क्या, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? कौन है वो लड़की, नाम बताओ मुझे, जिसकी वजह से मेरी बहन का घर टूट गया?
8: अरे वो तो इसको पता नहीं, ये सपना उसने देखा है।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।